मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 53 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

सुबह की ताजगी में एक अनोखी शक्ति छिपी होती है। जब दिन की शुरुआत होती है तो हवा में एक नई ऊर्जा घुल जाती है जो मन को हल्का और विचारों को उज्जवल बना देती है। नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बिला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्ते लखनऊ। धरती की गोद में सपनों को बोता है किसान, अपनी मेहनत से हर सूनी राह संजोता है किसान। अपने इन्हीं किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण विषय पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की ये जानकारी, आइए सुनते हैं।
1: शुभ प्रभात। भूमि की उर्वरता की जांच से पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता और आवश्यकता का ज्ञान बड़े आसानी से हो जाता है। इसके द्वारा फसल में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों या हम कहें उर्वरकों की मात्रा जो दी जाती है वह निर्धारित कर दी जाती है। उतना ही प्रयोग करने से अतिरिक्त जो खर्च होता है उससे बचत होती है। मिट्टी की जांच जरूरी है इसलिए क्योंकि आधुनिक काल में अब इसकी महत्ता बढ़ती चली गई है। जैसे हम या फिर अपने पशुओं के लिए कोई रोग होने पर उसकी जांच कराते हैं, फिर उसके बाद दवाई लेते हैं, ऐसे ही मिट्टी में अगर कोई कमी है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। खेत की मिट्टी में पौधों की जो समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसकी उपलब्ध मात्रा का ज्ञान हो जाता है और रासायनिक परीक्षणों द्वारा आकलन करना, साथ ही विभिन्न भूमि के विकारों जैसे कि मृदा की लवणीयता, क्षारीयता और साथ ही साथ अम्लीयता की जांच करना मृदा परीक्षण कहलाता है। एक सामान्य तौर पर सोच हमारी यही है और इसको इसी तरह से परिभाषित भी किया जाता है और समझा जाता है। मृदा परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है यह हम सभी जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कुछ तथ्य ऐसे रखे गए हैं शायद जिन्हें हम नहीं जानते हैं। उनमें मृदा में जो उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता है इसका ज्ञान हमें तो हो जाता है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन मृदा परीक्षण के परिणाम के अनुसार फसल को संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराना है यह अनिवार्य हो जाता है। अब उस खेत की जांच हुई, कौन सी फसल आप उगाएंगे तो कितनी मात्रा डालनी है वैज्ञानिकों द्वारा उस जाति प्रजाति के अनुसार जो संस्तुति की जाती है बस उतना ही डालना होगा इस जाँच रिपोर्ट के होने के आधार पर। संतुलित उर्वरकों की सही मात्रा, सही अनुपात, सही विधि द्वारा मिट्टी, फसल और जलवायु की भिन्नता के अनुसार प्रयोग करना होगा। किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी को दूर करना भी आसान हो जाता है, जैसे कि जिंक की कमी से होने वाला खैरा रोग। विभिन्न कीट बीमारियों का प्रबंधन भी करना आसान हो जाता है। संतुलित और आवश्यक उर्वरक प्रयोग द्वारा उन पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि अतिरिक्त जो वहाँ हम अंधाधुंध प्रयोग की बात की जाती है समाज में वह नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें समाहित होगा और उतने ही पैसे हमारे खर्च होंगे जितने की आवश्यकता फसल को है। मिट्टी की जांच का उद्देश्य स्पष्ट होता है। मृदा जांच से भूमि की अम्लीयता या क्षारीयता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनके सुधार के लिए सुधारकों की मात्रा और प्रकार की सिफारिश भी साथ साथ मिल जाती है तो उसका उपयोग किया जाता है। फसलों एवं उनकी प्रजातियों की संस्तुति करना जो अम्लीयता, लवणीयता व क्षारीयता सहन करने की क्षमता रखती हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता का ज्ञान हो जाने के कारण जाँच से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा तत्व पर्याप्त है, किस तत्व की कमी

0: क्षमता रखती हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता का ज्ञान हो जाने के कारण जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा तत्व पर्याप्त है, किस तत्व की कमी है, किस आधार पर उर्वरक की संस्तुति की जाती है, यह सब पता हो जाएगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मृदा जांच परिणामों के आधार पर मृदा उर्वरता का मानचित्र भी तैयार कर दिया जाता है और साथ ही साथ मृदाओं का उर्वरता वर्गीकरण किया गया रहता है। इससे होता क्या है कि विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक संस्तुति हमें प्राप्त हो जाती है। फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता चल जाता है कि कहाँ हम बाग लगाएं और बाग लगाएं तो कौन सा बाग लगाएंगे उसके लिए हमारी मिट्टी उपयुक्त है, इसलिए ये सब आवश्यक है। मिट्टी जांच का परिणाम भी हमारे सामने होता है तो उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। इसको हम चार चरणों में बांटते हैं, मिट्टी की जांच को। भूमि का नमूना एकत्र करना, भूमि नमूनों की जांच, भूमि की जांच से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण और साथ ही साथ भूमि की जांच के परिणामों के आधार पर उर्वरकों, भूमि सुधारकों का निर्धारण, ये तथ्य होते हैं जिन्हें हम आगे अपने कार्यक्रम में समाहित करेंगे और फिर आगे जानने की जरूरत होती है। आज हमने केवल मिट्टी जांच क्या होती है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कुछ किया जाता है इसमें, एक सतही जानकारी के तौर पर आपके सामने रखा।
1: अभी आप सुन रहे थे मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण विषय पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की जानकारी। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि यहूदियों की नाटकशाला में 11 सितंबर 1906 को एक सभा हुई। ट्रांसवाल के भिन्न भिन्न शहरों से प्रतिनिधियों को सभा में बुलाया गया। सभा हुई, नाटकशाला में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। सब लोगों के चेहरों पर मैं ये भाव देख सकता था कि कुछ नया काम हमें करना है, कुछ नई बात होने वाली है। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी सभा के सभापति पद पर आसीन थे। सभा में जितने प्रस्ताव पास हुए थे उनमें सच्चा प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय इस प्रकार था कि इस बिल के विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद अगर वो धारा सभा में पास हो ही जाए तो हिंदुस्तानी उसके सामने हार न माने और हार न मानने के फलस्वरूप जो दुख भोगने पड़े उन सबको बहादुरी से सहन करें। यह प्रस्ताव मैंने सभा को अच्छी तरह समझा दिया। सभा ने शांति से मेरी बात सुनी। सभा का सारा कामकाज हिंदी में या गुजराती में ही चला, इसलिए किसी को कोई बात समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक वक्ता सेठ हाजी हबीब थे, वे भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत पुराने और अनुभवी निवासी थे। उनका भाषण बड़ा जोशीला था। आवेश में आकर वे यहां तक बोल गए कि ये प्रस्ताव हमें खुदा को हाजिर मानकर पास करना चाहिए। मैं इस सभा में आए हुए सब लोगों को ये सलाह देता हूं कि वे भी खुदा को हाजिर मानकर ऐसी कसम खाएं। इस प्रस्ताव के समर्थन में अन्य लोगों ने भी तीखे और जोशीले भाषण किए। जब सेठ हाजी हबीब बोलते बोलते कसम की बात पर आए तब मैं चौंका और सावधान हो गया। तभी मुझे अपनी जिम्मेदारी और हिंदुस्तानी कौम की जिम्मेदारी का पूरा भान हुआ। आज तक कौम ने अनेक प्रस्ताव पास किए थे, अधिक सोचने विचारने के बाद या नए अनुभवों के बाद उन प्रस्तावों में परिवर्तन भी किए गए थे। सिद्धांत की दृष्टि से सोचा जाए तो किसी निश्चय में और ईश्वर का नाम लेकर की गई प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच समझकर कोई निश्चय करता है तो वो अपने निश्चय से कभी डगता नहीं। उसकी दृष्टि में उस निश्चय का महत्व उतना ही होता है जितना कि ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा का। लेकिन दुनिया सैद्धांतिक निर्णयों के आधार पर नहीं चल, वो ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय के बीच महासागर जितना भेद मानती। किसी सामान्य निश्चय को बदलने में बदलने वाले को शर्म नहीं आती, लेकिन ईश्वर को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य जब प्रतिज्ञा को भंग करता है तब वो खुद ही नहीं शर्माता, समाज भी उसे धिक्कारता है और पापी मानता है। इस बात ने मानव मन में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि कानून

की दृष्टि में भी कसम खाकर कही गई बात अगर झूठी साबित हो तो कसम खाने वाला आदमी अपराधी माना जाता है और उसे कड़ी सजा दी जाती है। ऐसे विचारों से भरा हुआ मैं, जिसे गंभीर प्रतिज्ञाओं का काफी अनुभव था और जिसने प्रतिज्ञाओं के मीठे फल जीवन में चखे थे, सेठ हाजी हबीब के कसम खाने वाले सुझाव से चौंक उठा। मैंने उसके परिणामों का अनुमान एक क्षण में लगा लिया। इस घबराहट से मुझमें उत्साह और जोश पैदा हुआ और यद्यपि मैं उस सभा में प्रतिज्ञा करने या दूसरों से कराने के इरादे से नहीं गया था, तो भी मुझे सेठ हाजी हबीब का सुझाव बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने सभापति से कहा कि मुझे सेठ हाजी हबीब के कथन का गूढ़ अर्थ सभा को समझाने की इजाजत दी जाए। मुझे इजाजत मिली और मैं खड़ा हो गया। मैं तो ये मानता हूं कि जो मनुष्य सावधान रहकर शुद्ध बुद्धि से प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसे भंग करता है, वो अपनी इंसानियत अथवा मनुष्यता खो देता है। और जिस प्रकार पारा चढ़ाया हुआ तांबे का सिक्का रुपया नहीं है, ये पता चलते ही उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, बल्कि उस खोटे सिक्के का मालिक सजा का पात्र हो जाता है, उसी प्रकार झूठी कसम खाने वाले आदमी की भी कोई कीमत नहीं रह जाती।

0: गांधी चर्चा संपन्न हुई। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रत्येक नया दिन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। सुबह की पहली किरण हमें ये संदेश देती है कि चाहे बीता हुआ समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज एक नई शुरुआत का अवसर हमारे सामने है। इसीलिए दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण, धन्यवाद और शुभ संकल्पों के साथ करनी चाहिए।

मनुष्य जब अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाता है तब उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। जब मन में ईश्वर प्रकाश जागृत होता है तब जीवन की कठिनाई भी सरल दिखाई देने

जिस तरह ज्वाला अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार माँ की कृपा मनुष्य के दुख, भय और संकटों को दूर कर देती है। भक्त विश्वास के साथ माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है और उनसे सुख, शांति और समृद्धि प्रसाद रूपेण पाता है।

मनमोहन का नाम, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बहादुरी की दान और उनकी लीलाएं जीवन को आनंद और शांति से भर देती हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए अब हम चलते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 189।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित

0: कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को है। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडौलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडौलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्परहितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिकसहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरम् अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीय सहभागीरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागीरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणं, रक्षा, डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि, क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं, सागरीय आतंकवादः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं, अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदि।

0: इति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतङ्कवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हम्जा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एकोननवतिः धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य अमूल्य है, क्योंकि यह हमें कार्य करने की शक्ति देता है, सपनों को साकार करने की ऊर्जा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस। आज की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनी पौष्टिक आड़ू के बारे में जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो अपने मखमली छिलके, रसीले स्वाद और भीनी खुशबू के लिए जाना जाता है। ये फल है आड़ू। आमतौर पर ये गर्मियों के उत्तरार्ध में बाजारों में दिखाई देता है और देखते ही देखते अपनी खुशबू और रंगत से लोगों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन आड़ू केवल एक सुंदर और स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए एक संपूर्ण पोषण भंडार भी है। आड़ू देखने में जितना खूबसूरत है इसके गुण भी उतने ही चमत्कारी हैं। इसकी मुलायम त्वचा, भीतर का रसीला गूदा और मिठास भरा स्वाद शरीर को ताजगी से भर देता है। आड़ू में कैलोरी की मात्रा कम होती है लेकिन पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, फाइबर और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो न केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं बल्कि त्वचा, बाल और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। गर्मियों के इस मौसम में जब शरीर डिहाइड्रेशन और थकान का शिकार होने लगता है तब आड़ू जैसे फल शरीर में पानी और ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक ऐसा फल है जो पेट को ठंडक देता है लेकिन साथ ही साथ पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये आंतों को सक्रिय रखता है और मल त्याग को सहज बनाता है, इसलिए कब्ज या अपच जैसी समस्याओं में आड़ू बहुत फायदेमंद माना जाता है। आड़ू में उपस्थित विटामिन ए आंखों की रोशनी बनाए रखने में सहायक होता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। वहीं विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है जिससे शरीर सामान्य संक्रमणों से लड़ने में सक्षम रहता है। अगर आप बार बार सर्दी, खांसी या गले की खराश की चपेट में आ जाते हैं तो अपने आहार में आड़ू जैसे फलों को शामिल करना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जो लोग अपनी त्वचा की चमक और कोमलता बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए आड़ू एक प्राकृतिक उपाय है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है और झुर्रियों या दाग धब्बों की समस्या भी कम होती है। आप चाहें तो आड़ू का रस चेहरे पर लगाकर फेस पैक की तरह भी उपयोग कर सकते हैं जो त्वचा को ठंडक और पोषण देता है। श्रोताओं वजन नियंत्रित रखने के लिए भी आड़ू एक आदर्श फल माना जाता है। ये मीठा जरूर होता है लेकिन इसमें नेचुरल शुगर होती है और कैलोरी बहुत कम होती है। नाश्ते में या दोपहर के खाने से पहले आड़ू लेना एक हेल्दी आदत हो सकती है। ये पेट को भरता है और अधिक खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये शरीर की चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। कुछ शोधों के अनुसार आड़ू में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।

0: पोटेशियम की मौजूदगी रक्तचाप को संतुलित रखती है और दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए ये फल लाभकारी हो सकता है। अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की तो ये भी पाया गया है कि आड़ू जैसे फलों का सेवन मूड को बेहतर बनाता है। इसका स्वाद और रस शरीर में ताजगी के साथ एक सुखद अनुभव देता है जिससे मन प्रसन्न रहता है। इसलिए दिन की थकान या तनाव को दूर करने के लिए एक आध आड़ू खाना न केवल स्वाद में अच्छा लगता है बल्कि मानसिक रूप से भी राहत देता है। भारत में आड़ू की खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी और ठंडी जलवायु इस फल को विशेष मिठास और रसदार स्वाद देती है। जब ये आड़ू मैदानी इलाकों में पहुँचते हैं तो लोग इसे देख कर ही गर्मी के इस फलोत्सव का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप बाजार जाएं और कोई गुलाबी रसीला फल मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लीजिए कि वो आड़ू है, जो केवल जायका ही नहीं जिंदगी के पोषण का प्रतीक भी है। इसे अपने आहार में शामिल करें, अपने बच्चों और बुजुर्गों को खिलाएं और जानें कि कैसे एक छोटा सा फल बड़े स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप पौष्टिक आड़ू के बारे में नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रही थी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा से की गई भेंटवार्ता का विषय है वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। भेंट करता है सुभाष खन्ना। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश। सुनिएगा दुनिया की अजब गजब खबरें। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व जैव विविधता दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम अपराजिता में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम 90 बरस की आकाशवाणी कितनी नई कितनी पुरानी कार्यक्रम बहने सुनेंगी। प्रेजेंटर हैं सीमा अग्रवाल। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर मेंथा की फसल का आसवन और विपणन विषय पर डॉक्टर रीमा देवी से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। इसमें इस मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय विषय पर अनुष्का रमण शुक्ला से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। भेंट करता है सुभाष खन्ना। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर हमारी सेहत के अंतर्गत गंभीर रोगियों के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक, इस विषय पर डॉक्टर अर्चना सिन्हा वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ SGPGI लखनऊ से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है नीना सोनकर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में डॉक्टर नागेश्वर दुबे की वार्ता होगी जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण दायित्व। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित होगी। आलेख एवं वाचन शरद प्रकाश पांडे का, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें इंटरव्यू सुनिएगा। टॉपिक है एस्पेक्ट योर सेल्फ इंटरेक्शन सेल्फ राइटिंग बिलीव्स एंड अदर एस्पेक्ट। बातचीत की है डॉक्टर शिल्ली जैन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश IT कॉलेज लखनऊ। इंटरव्यूअर हैं डॉक्टर शिवा राकेश। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर साबरी ब्रदर्स पेश करेंगे नात और कव्वाली। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शुद्ध

सुनेंगे रात 9:30 पर, लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमादरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर लक्ष्मी जोशी और नवनीता जफा के गाए अवधी युगल लोकगीत आप सुन सकते हैं। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व जैविक विविधता दिवस। श्रोताओं, प्रकृति की गोद में बसे इस सुंदर संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल जंगलों, पेड़ों, पशु पक्षियों या नदियों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे जीवन की हर सांस से जुड़ा है। यह विषय है विश्व जैविक विविधता दिवस। हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि मानव समाज को यह समझाया जा सके कि पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जंगल, जल, मिट्टी और सूक्ष्म जीव ये सभी मिलकर जीवन की एक सुंदर और अद्भुत श्रृंखला बनाते हैं। यदि इस श्रृंखला की एक भी कड़ी कमजोर होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति और मानव जीवन पर पड़ता है। जैविक विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हमारे भोजन का स्वाद, हवा की शुद्धता, जल का संतुलन, औषधियों की उपलब्धता और मौसम की नियमितता, इन सब का संबंध जैव विविधता से है।

आज जब दुनिया तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, तब प्रकृति का संतुलन कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, नदियों का दूषित होना, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण ने अनेक जीव जंतुओं और पौधों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई गांवों में सहज दिखाई देने वाली गौरैया आज दुर्लभ होती जा रही है। जंगलों का राजा कहलाने वाला बाघ भी संरक्षण की प्रतीक्षा में है। मधुमक्खियों की घटती संख्या खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। प्रकृति बार बार संकेत दे रही है कि यदि हमने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आने वाली पीढ़ियों को केवल किताबों और चित्रों में ही अनेक जीवों को देखना पड़ेगा। जैव विविधता का अर्थ केवल अलग अलग जीवों की संख्या नहीं, बल्कि यह उस संतुलन का नाम है जिसमें हर जीव का अपना महत्व होता है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक विशाल वृक्ष। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां जीवन देती हैं और पक्षी बीजों को फैलाते हैं और सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। प्रकृति का अद्भुत तंत्र बिना किसी स्वार्थ के निरंतर मानव जीवन की रक्षा करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। आज के समय में जैविक विविधता की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। असमय वर्षा, बढ़ती गर्मी, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं ये दर्शाती हैं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जब जंगल कटते हैं तो वर्षा चक्र प्रभावित होता है, जब नदियां प्रदूषित होती हैं तो जल संकट बढ़ता है, जब जीव जंतु समाप्त होते हैं तो खाद्य श्रृंखला टूटने लगती है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए भविष्य की सुरक्षा भी है। भारत जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के समृद्ध देशों में गिना जाता है। हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सुंदरवन के मैंग्रोव वनों तक हमारे देश में प्रकृति के अनगिनत रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ

हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ, पक्षी, जीव जंतु और औषधि पौधे पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति को पूजनीय माना गया है। पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे वृक्षों को सम्मान दिया गया है। नदियों को माता कहा गया है। पशु पक्षियों को देवताओं के वाहन के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। यह हमारी परंपरा का संदेश है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि संवेदनाओं का भी है।

विश्व जैविक विविधता दिवस हमें यह प्रेरणा देती है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। केवल सरकारों या संस्थाओं के प्रयासों से ही पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जल का संरक्षण करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी अत्यंत आवश्यक है। जब नई पीढ़ी प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेगी, तभी भविष्य सुरक्षित बन सकेगा। आज तकनीक के युग में मनुष्य चांद और मंगल तक पहुंचने की बात कर रहा है, लेकिन यदि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ गया तो सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति हमारे लिए केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जल सुरक्षित रहेगा, जल सुरक्षित रहेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा। विश्व जैविक विविधता दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि आत्ममंथन का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि हर जीव की साझी धरोहर है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां विकास के साथ साथ प्रकृति का सम्मान भी बना रहे। छोटी छोटी आदतें जैसे पेड़ लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना और जल और बिजली की बचत करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। आइए इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि जैविक विविधता की रक्षा के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। इसी आशा और सकारात्मक संदेश के साथ दीजिए अंजलि श्रीवास्तव को विविधा कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में

0: वृत्त करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और SP सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त

0: किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी SP का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट UP के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की।

0: संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनते हैं सुषमा वाजपेयी का राग ललित में ख्याल गायन।

अभी आप सुषमा वाजपेयी का राग ललित में घायल गायन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इसी के साथ नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में

0: आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास CCTV कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने

0: पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

और श्रोताओं, हमारे पास मेल आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल आया है हमारे पास रायबरेली से, रामराज राजभानु रामशंकर पत्रकार पहाई वाले, रक्षा मौर्य रामसागर साहू, रसूलपुर वाले पप्पू पासी, और दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, आप सभी सुनना चाहते हैं। एक फूल दो माली फिल्म से गीत जिसे गाया है मन्ना डे ने।

0: आइए
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, हमारे पास अगला मेल आया है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से रजनीश चौरसिया, रोशनी चौरसिया का। ये सुनना चाहते हैं सिंदूर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। और इसे सुनने के लिए हमारे पास एक मेल और है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप का अक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई का। आप सभी सुनना चाहते हैं सिंदूर फिल्म का ये गीत।

हमारे श्रोता हमें बहुत दूर दूर से मेल भेजते हैं, और देखिए ऐसा ही एक मेल आया है सीतामढ़ी बिहार से। मुसरत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफअत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज का। और हमारे पास दूसरा मेल है बघेरा दुर्ग से, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। आप सभी सुनना चाहते हैं जवाब फिल्म का गीत पंकज उदास की आवाज़ में।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। अगला मेल है हमारे पास विजयलक्ष्मी कुशवाहा खांडी जनपद हरदोई से। ये लिखती हैं, इन्हें सुनना है नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। कोमल तिवारी बहराइच से सुनना चाहती हैं और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा, इन्होंने भी हमारे पास मेल भेजा है इसी गीत को सुनने के लिए। और दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा आप सभी सुनना चाहते हैं नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।

लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी, आप सभी सुनना चाहते हैं घर द्वार फिल्म का गीत। अनुराधा पुनवाल और अलका याग्निक की आवाज़ों में विजयपाल जी ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। इन्होंने जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपको भी शुभकामनाएं। इन्हें आज का विविधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद विजयपाल जी। और इन्होंने इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। और साथ में हमारे पास एक मेल और है जबलपुर मध्य प्रदेश से, अशोक सिंह, सुनीता सिंह, रितु सिंह और गुड़िया वेदा सिंह का। आप भी सुनना चाहती हैं घर द्वार फिल्म का ये गीत? हमारे पास एक मेल और है लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां का। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

बात नहीं करूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बुरा मान गई।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब यहीं समाप्ति चाहते हैं हम, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मेल हमारे पास बहुत सारे हैं और काफ़ी सारे मेल हमारे श्रोताओं के पसंद किए गए और उन्हें उनकी पसंद के गीत भी सुनाए गए। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियां लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेसवे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया,
1: ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद सीधे से जोड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले।
0: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी के 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई 20 जून 2026 तक प्रांगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में, पंजीकरण के बाद दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सविलियन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
2: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
3: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में

0: जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को से समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना नोडल अधिकारी डिबाई व अनूप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी न रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौआश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, सीसीटीवी क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रय से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
1: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठे वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताजा पानी देने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
0: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में हर रोज़ कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे तजुर्बात पेश आते रहते हैं जिन्हें जानकर आपको हैरत तो होती ही है, साथ ही आपकी मालूमात में भी इजाफा होता है। इतना ही नहीं, इन तमाम खबरों और तजुर्बात से हम कहीं ना कहीं मुतासिर भी होते हैं। उर्दू प्रोग्राम में आज हम ऐसी ही कुछ अजब गजब खबरों के साथ हाजिर हैं जिनसे आपको न सिर्फ हैरत होगी बल्कि आपकी मालूमात में भी मज़ीद इजाफा होगा। सामाइन, फैशन की दुनिया हमेशा से अपने अजीब और गरीब ट्रेंड्स के लिए सुर्खियों में रही है। कभी फटी जीन्स लोगों को

हैरान करती हैं तो कभी पुराने लुक वाले कपड़े स्टाइल स्टेटमेंट बन जाते हैं। अब इसी तरतीब में एक नया और चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, वो हैं फटे मोजे। सुनने में ये भले ही अजब लगे, लेकिन इन दिनों लग्जरी फैशन मार्केट में ऐसे मोजों का ज़बरदस्त मुतालबा देखा जा रहा है। ख़ास बात यह है कि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि एक जोड़ी खरीदने में हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन फैशन के दीवानों को पैसे की परवाह कहाँ होती है। इसके मद्देनज़र कई बड़े लग्जरी ब्रांड ने जानबूझकर पुराने और फटे लुक वाले मोज़े बाज़ार में उतारे हैं। इन मोज़ों को ख़ास डिज़ाइन के साथ तैयार किया जाता है ताकि वो आम मोज़ों से बिल्कुल अलग नज़र आएँ। सामईन, गुजरात का लिटिल रण ऑफ कच्छ अपनी अनोखी जोग्राफियाई बनावट और कसीरुल तादाद वाइल्ड लाइफ की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। ये इलाका ख़ास तौर पर जंगली गधों और गैर मुल्की परिंदों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में यहाँ एक ऐसी नायाब जात का जानवर दिखाई दिया है जिसने वाइल्ड लाइफ के माहरीन को हैरान कर दिया है। सुरेंद्र नगर ज़िले के महकमे जंगलात के अफसरान ने दावा किया है कि दौरान गश्त उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ियों में शामिल फेनेक्स फॉक्स को कैमरे में कैद किया है। भारत में इस जात की लोमड़ी का दिखना आम नहीं माना जा रहा है और इसे माहौलियाती बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये नायाब लोमड़ी रण के वक्षराज बेट इलाके के पिछले हिस्से में नजर आई। दरअसल महकमे जंगलात की टीम मामूल के तौर पर निगरानी मुहिम पर थी, तभी उनकी नज़र एक छोटे और अलग से दिखने वाले जानवर पर पड़ी। पहले तो अफसरान को लगा ये कोई नॉर्मल रेगिस्तानी लोमड़ी होगी, लेकिन करीब से देखने पर उसकी देही अलामत काफ़ी अलग पाई गईं। इसके बाद टीम ने तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जिन्हें दीगर माहरीन के पास जाँच के लिए भेजा गया है। सामईन, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के साला एंथनी ओंडो अपनी पढ़ाई के अनोखे खर्च उठाने के लिए इन दिनों सुर्खियों में हैं। शुरुआत एक छोटे तजुर्बे से हुई, लेकिन आज उनका ये काम कामयाब तिजारत बन चुका है। बिना बड़े सरमाए से शुरू किए गए इस कारोबार से वो इलाकाई कैफे और लोगों को शहद सप्लाई कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई करना आसान नहीं माना जाता, खासकर तब जब बात भारी भरकम ट्यूशन फीस की हो। ज्यादातर छात्र अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, कोई कैफे में काम करता है तो कोई डिलीवरी या रिटेल स्टोर में शिफ्ट लगाता है। लेकिन एंथोनी ओडो ने शहद की मक्खी की परवरी को अपना साइड बिजनेस बनाया और आज उसी से होने वाली कमाई से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उनकी ये कहानी जब लोगों के बीच सामने आई तो हर कोई मोटिवेट हो गया। सामईन, नाखून चबाने की आदत अक्सर मामूली लगती है, लेकिन इसके नतायज खतरनाक भी हो सकते हैं। हाल ही में 21 साल अमेरिकी लड़की गैबी सोस्की ने इस आदत के खतरात को बेहद वाजे तरीके से सामने रखा। दरअसल गैबी को बचपन से ही नाखून चबाने की आदत थी, ये उनके लिए आम और रोजमर्रा का मामूल बन चुका था जिसे उन्होंने कभी ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। फरवरी की शुरुआत में उनके एक नाखून के किनारे छोटा सा हैंग नेल यानी जिल्द का फटा हुआ हिस्सा बन गया। आमतौर पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए गैबी ने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। उनकी उंगली में सूजन आने लगी और दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये आम इन्फेक्शन होगा जो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और सूजन काफ़ी बढ़ गई, तब उन्होंने डॉक्टर से रابطہ किया। इसके बाद डॉक्टरों ने इन्फेक्शन को रोकने के लिए उनकी उंगली को काटना मुनासिब समझा और बाद में उनकी उंगली काटनी पड़ी। सामईन, आज के दौर में जहां सियासत में कुर्सी के लिए खींचतान मची है, वहीं दुनिया के एक कोने में एक ऐसा शहर भी है जहां के आवाम ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक कुत्ते को अपना रहनुमा मुंतखब किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है इडविल, जहां पिछले 14 वर्षों से गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का कुत्ता ही शहर का मेयर बनता आ रहा है। इस अजब रवायत की शुरुआत 2012 में हुई जब पहली बार मेयर मैक्स फर्स्ट ने इंतखाबात में फतह हासिल की। मजेदार बात यह है कि ये मेयर सिर्फ नाम का नहीं है, कुत्ता बाकायदा अपनी वर्दी पहनकर शहर का जायजा लेता है और सयाहों का खैर मकदम भी करता है। सामईन, चीन के वांग तियान किंग के लिए एक मामूली सरदर्द और मिर्गी के दौरे उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। दरअसल साल 2011 में जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने उनके दिमाग का सिटी स्कैन किया

और रिपोर्ट देखते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि वांग के दिमाग के दाहिने हिस्से में एक गोली धंसी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरान होकर जब डॉक्टरों ने वांग से उनके माजी के बारे में पूछा तो पता चला कि ये वाकया साल 1988 का था, जब वो सड़क पर टहल रहे थे। तभी उनके सिर पर कुछ तेजी से आकर लगा था। उस वक्त वांग को लगा कि किसी ने शरारत में गुलेल से पत्थर मारा है। चूंकि घाव मामूली था और खून भी ज्यादा नहीं निकला, इसलिए वांग ने आम मरहम पट्टी की और उस बात को भूल गए। लेकिन जिसे वांग पत्थर समझ रहे थे वो असल में गोली थी जो उनके सर को चीरती हुई अंदर जा चुकी थी। ये वाकया मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया कि 23 साल तक ये गोली जानलेवा क्यों साबित नहीं हुई। इसके पीछे कुछ अजीब और गरीब वजूहात सामने आए। दरअसल गोली की रफ्तार इतनी कम थी कि वो दिमाग के बेहद नाजुक हिस्सों को चीरने के बजाय एक कोने में थम गई। किस्मत से गोली दिमाग के उस हिस्से में जाकर रुकी जहां उसने किसी नर्व सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया। दो दहाइयों तक धात रहने के बाद भी कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं फैला, लेकिन गोली इस कदर अंदर धंसी हुई थी कि एक छोटी सी चूक और वांग को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक घंटों चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने गोली को बाहर निकाल लिया। आज वांग न सिर्फ सेहतमंद हैं बल्कि इस बात के लिए भी मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं कि कोई इंसान कैसे अपनी मौत को 23 साल तक सर में दबाए रह सकता है। चीन के झेंजियांग से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां के एक 40 साल शख्स का दिल दो दिन तक यानी तकरीबन 40 घंटे नहीं धड़का, फिर भी वो जिंदा रहा। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी बदौलत आज वो पूरी तरह सेहतमंद हैं। झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से मुतालका एक हॉस्पिटल के डॉक्टर लू जियो ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा था, उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए लेकिन दिल ने रिएक्ट नहीं किया। जब उम्मीदें खत्म होने लगी तब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO मशीन का सहारा लिया। ECMO मशीन बदन के बाहर एक मसनूई दिल और फेफड़े की तरह काम करती है। यह खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और उसमें ऑक्सीजन भरकर वापस बदन में पंप करती है। डॉक्टर लू के मुताबिक जहां आम CPR से बचने की उम्मीद सिर्फ 1% होती है, वहीं ECMO इसे बढ़ाकर 50% तक कर देता है। सामाइन, आप जानते हैं कि कुदरत के खेल निराले होते हैं। सामाइन, दुनिया में एक छोटा सा कीड़ा है एफिड। इसकी खासियत इतनी अजब है कि इसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दरअसल ये कीड़ा पैदा होते ही हामला होता है और इसे बच्चे पैदा करने के लिए किसी नर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरअसल एफिड में एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल अमल पाया जाता है जिसे साइंसदा टेलीस्कोपिंग जनरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही बदन में कई पीढ़ियाँ एक साथ मौजूद रहती हैं। जब एक मादा एफिड पैदा होती है तब उसके अंदर पहले से ही उसके बच्चे बढ़ रहे होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, उन बच्चों के भीतर भी अगली पीढ़ी के अंडों का बनना शुरू हो चुका होता है। यानी एक तरह से तीन पीढ़ियां एक ही वक्त में एक ही जिस्म में रह रही होती हैं। इसे समझना ऐसा है जैसे एक के अंदर दूसरी और दूसरे के अंदर तीसरी जिंदगी तैयार हो रही हो। एफिड शक्ल में बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर लंबे। इनका बदन नर्म होता है और ये खास तौर पर पेड़ों का रस चूसकर जिंदा रहते हैं। यही वजह है कि ये फसलों और बागीचों के लिए काफ़ी नुकसानदेह माने जाते हैं। गर्म मौसम में इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। सामाइन, बिहार के पूर्वी चंपारण से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रामबन देवी माई के स्थान पर वाक़े एक तालाब में माहीगीरों के जाल में एक ऐसी मछली फंसी है जिसने माहरीन और देही बाशिंदों दोनों को हैरत में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस मछली की दो नहीं बल्कि 4 आंखें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहीगीर हर रोज़ के मानिंद तालाब में जाल डालकर मछलियां निकाल रहे थे, तभी करीब 4 किलो वजन की एक बड़ी मछली जाल में फंसी। जब उसे बाहर निकाला गया तो इसकी देही बनावट देखकर माहीगीर दंग रह गए। माहीगीरों के मुताबिक ये बी ग्रेड जात की मछली है, लेकिन इसके सर पर 4 आंखों जैसे निशान का होना इसे आम मछलियों से बिल्कुल अलग बनाता है। सामाइन, अगर आपको लगता है कि आप बहुत काहिल हैं तो स्लॉथ जानवर से मिलकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। दरअसल स्लॉथ दिन के 22 घंटे सिर्फ

होने में गुजारता है, वहीं जागने के बाद भी इनकी फुर्ती ऐसी है कि देखकर आंखें मलते रह जाएंगे। जमीन पर तो ये चल भी नहीं पाते, बस पंजों के दम पर खुद को घसीटते रहते हैं, लेकिन पानी में ये 3 गुना ज्यादा तेज तैर सकते हैं। हम इंसान जहाँ खाना कुछ ही घंटों में हजम कर लेते हैं, वहीं इस जानवर को एक पत्ता हजम करने में भी पूरे 30 दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि ये अपनी एनर्जी बचाने के लिए हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते। ये जानवर अपनी 90% जिंदगी पेड़ों पर उल्टा लटक कर गुजारते हैं। ये इतना काहिल होते हैं कि टॉयलेट जाने के लिए भी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पेड़ से उतरते हैं, लेकिन यही काहली उनके लिए कभी कभी जानलेवा साबित होती है। ये नीचे उतरते ही शिकारियों की नज़र में आ जाते हैं और तकरीबन 50% स्लॉथ की मौत इसी दौरान होती है। सामाइन, भारत में कई ऐसे पौधे हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके असरात उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है लैंटाना, जिसे अक्सर भारत की बद्दुआ कहा जाता है। इसकी रंग बिरंगी छोटी छोटी फूलों की गुच्छेदार बनावट लोगों को अपनी जानिब रागिब करती है, लेकिन इसके पीछे छुपे नुकसान काफ़ी खतरनाक होते हैं। लैंटाना एक इनवेसिव स्पेशीज का पौधा है जो बहुत तेज़ी से फैलने की कुव्वत रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सख्त से सख्त हालात में भी जिंदा रह सकता है। चाहे सूखा इलाका हो या खारा पानी, ये आसानी से वहाँ उग जाता है। इस पौधे का एक खतरनाक पहलू इसकी जहरीली तासीर भी है। इसके पत्ते अगर मवेशी या जानवर खा लें तो उनकी सेहत पर खतरनाक असर पड़ सकता है। साइंसदान के मुताबिक लैंटाना के इस्तेमाल से जानवरों के लीवर को नुकसान पहुंचता है और कई मामलों में उनके अज़ो काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा ये जिल्द को सूरज की रोशनी के तई ज़्यादा हसास बना देते हैं, जिससे जल्दी परेशानियाँ भी बढ़ सकती हैं। लैंटाना के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कदीमी दवाओं में किया जाता है। सामाइन, कुदरत अपने अंदर लातादाद राज छिपाए बैठी है और वक्त वक्त पर इनमें से कुछ राज सामने आकर हमें चौंका देते हैं। हाल ही में मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के घने जंगलों से एक ऐसी ही दिलचस्प और अहम तलाश सामने आई है। साइंसदान ने यहाँ एक नायाब जमीन के अंदर रहने वाले सांप की पहचान की है, जिसे अब एक नई जात पर मुस्तनद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेघालय का गारो हिल्स इलाका पहले से ही अपनी आला बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगल कई अनोखे और कम मालूम जानवरों का घर हैं। इसी इलाके के ओरा गीतोक इलाके में मुहक्किकीन की एक टीम को एक खास किस्म का सांप मिला। स्टडी के बाद इस नई जात को कैलामारिया गारो एनेसिस नाम दिया गया है, जिसे आम जबान में गारो हिल्स रीड स्नेक भी कहा जा रहा है। इस तलाश को बैन अल-अक़वामी साइंसदान रिसाले में भी शाया किया गया है, जिससे इसे आलमी सतह पर भी पहचान मिली है। समाइन, बदलाव के इस दौर में आजकल मौत के बाद आखिरी रसूमात के कदीमी तरीके भी बदल रहे हैं। दरअसल अमेरिका के डेनवर की 43 साल एरिन मेरेली ने अपनी बहन को विदा करने का ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। उन्होंने बहन की हड्डियों से एक खूबसूरत विंड चाइम बनवाया और उसे अपने घर की बालकनी में सजा दिया। जाहिर है आपके जहन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि एक खातून ने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एरिन की बहन काफ़ी फनकाराना मिजाज की थी। मरने से कबल उन्होंने एरिन से अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी हड्डियों को एक नीली विंड चाइम में बदल देना। एरिन ने अपनी बहन की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये अजीबोगरीब कदम उठाया। एरिन ने इस अजब अमल के लिए अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का सहारा लिया। इसमें बॉडी को पानी और केमिकल के जरिए धीरे धीरे गलाया जाता है। जो हड्डियां बच जाती हैं उन्हें पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। एरिन ने आर्टिस्ट केली गिल्डन की मदद से पाउडर को सांचे में ढालकर विंड चाइम तैयार करवाया और उस पर हल्का नीला पेंट करवाया। सामाइन, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा कमाल कर जाते हैं कि जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी तंग रह जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर चीन के एक छोटे बच्चे का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने अपनी गजब की स्पीड और तेज़ दिमाग से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बच्चे ने सिर्फ 0.39 सेकेंड में 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों को उसकी उंगलियों की मूवमेंट तक ठीक से दिखाई नहीं दी। इस

स्पीड क्यूबिंग की दुनिया में इतनी कम टाइमिंग हासिल करना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसके लिए सिर्फ हाथों की स्पीड ही नहीं बल्कि दिमाग की तेज़ प्रोसेसिंग और पैटर्न पहचानने की कुव्वत भी बहुत ज़रूरी होती है। सामाइन, आज के दौर में लोग कुछ घंटों में फ़्लाइट पकड़कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग बस में बैठकर भारत से सीधे लंदन तक सफ़र किया करते थे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा ज़रूर लगता हो, लेकिन ये सच है। ये दुनिया की सबसे लंबे सफ़र में से एक माना जाता था। ये बस करीब 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी और रास्ते में कई ममालिक से होकर गुजरती थी। इस अनोखी बस खिदमत का आगाज़ 15 अप्रैल 1957 को हुआ था। पहली बस लंदन से रवाना हुई और तकरीबन 50 दिनों का लंबा सफ़र तय करने के बाद 5 जून 1957 को कोलकाता पहुंची। यह खिदमत कई बरसों तक जारी रही। साल 1957 से लेकर 1976 तक यह खिदमत लोगों को सड़क के रास्ते लंदन से भारत और भारत से लंदन ले जाती रही। सामाइन, जब भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले बुर्ज खलीफा का जिक्र होता है। दुबई की चमचमाती स्काई लाइन के बीच खड़ी ये इमारत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि जदीद इंजीनियरिंग और लग्जरी की मिसाल मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस इमारत का मालिक कौन है? अक्सर लोग मान लेते हैं कि बुर्ज खलीफा दुबई के सदर या मुत्तहदा अरब अमीरात हुकूमत की जायदाद होगी। हालांकि सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। इस शानदार इमारत के पीछे एक बड़ी रियल इस्टेट कंपनी और एक बिजनेसमैन का ख्वाब छिपा हुआ है। सामाइन, जापान के करीब वाक़े रियुक्यू ट्रेंच की बेहद गहराइयों में साइंसदान को एक ऐसे राजों से भरा जानवर मिला है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है। समंदर की सतह से तकरीबन 30,000 फीट नीचे पाए गए इस जानवर की पहचान करना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। यह जानवर सफ़ेद और तकरीबन शफाफ दिखाई देता है और इतनी गहराई में इसका मिलना अपने आप में बेहद गैरमामूली है। सामाइन, आज की दुनिया में टेक्निक हमारी ज़िंदगी को आसान भी बना रही है और नई तशवीश को भी पैदा कर रही है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर ChatGPT इमेज 2.0 की मदद से एक बैंक चेक की तस्वीर तैयार की। ये कोई आम या नकली दिखने वाला चेक नहीं था बल्कि इतना असली लग रहा था कि पहली नज़र में कोई भी इसे असली मान सकता था। चेक पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और यहाँ तक कि नीचे की MICR लाइन भी बेहद सटीक तरीके से बनाई गई थी। रकम भी इस पर क्लियर 69,000 रुपये लिखे हैं। जैसे ही ये तस्वीर इंटरनेट पर फैली, लोगों के बीच हलचल मच गई। कई लोग इसे देखकर हैरान थे तो कई डर गए। तो सामाइन, ये थी इस माह की कुछ अजब गजब खबरें। उम्मीद है इन खबरों से आपके इल्म और मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपने तासुरात से मुतला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामेन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमेर को दे इजाज़त। आदाब।

आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी जोशी और नवनीता जफा के गाए अवधि युगल गीत। इनके स्वरों में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये देवी गीत।

खोल केवड़ियाँ खोल मैया, अभी आपने लक्ष्मी जोशी और नवनीता जफा के युगल स्वरों में ये देवी गीत सुना और इन्हीं की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाते हैं गंगा गीत।

0: अभी आप लक्ष्मी जोशी और नवनीता जफा की अवधि युगल सुरुमी ये गंगा गीत सुन रहे थे। संगत कर रहे थे ढोलक पर शशांक शर्मा, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर अलका सिंह और साइट रिदम पर बालकृष्ण शर्मा थे। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश।

0: आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म से, आवाज है महेंद्र कपूर की।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने

2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और विश्व की पहली एआई फीचर फिल्म हेल ग्राइंड का कान फिल्म महोत्सव में प्रीमियर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडिलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले

0: साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ईरान के फारसी खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण ने एक नक्शा जारी किया है। इससे होर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर गतिरोध कल और गहरा गया। इस नक्शे में उसने ईरानी तटों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के फुजैरा और अल कुवैन बंदरगाहों तक फैले जलमार्ग के बड़े हिस्से पर अपना नियामक नियंत्रण होने का दावा किया। ईरानी संस्था ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को प्राधिकरण से पहले से अनुमति लेनी होगी। इस दावे की संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 4,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप पोलैंड में अमरीकी सेना की तैनाती में अस्थायी देरी हुई है। मंत्रालय ने पोलैंड को अमरीका का आदर्श सहयोगी बताया। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में यूरोप में लगभग 80,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से लगभग 10,000 सैनिक पोलैंड में हैं। इससे पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि अगले 6 से 12 महीनों में जर्मनी से लगभग 5,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा पर दबाव तेज करते हुए उसे एक विफल राष्ट्र और अमेरिका के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा खतरा बताया। फ्लोरिडा और व्हाइट हाउस के अलग अलग संबोधन में दोनों अधिकारियों ने क्यूबा के प्रति कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। साथ ही बातचीत के जरिए समझौते की संभावना भी खुली हुई है। ओवल ऑफिस में उदारीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में क्यूबा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमरीका क्यूबा के लोगों और क्यूबा अमरीका के लोगों को द्वीप से फिर से जोड़ने में मदद करना चाहता है। कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री रूबियो ने भारत रवाना होने से पहले मियामी होमस्टेड हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं अधिक तीखा आकलन प्रस्तुत किया था। इसराइल सरकार ने गजा की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले सैकड़ों नौसैनिक दलों के सदस्य को रिहा कर दिया है और कुछ को निर्वासित किया है। कार्यकर्ताओं के साथ हुए इस बर्ताव पर विदेशों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते कई देशों ने इसराइल दूतों को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की। लगभग 420 कार्यकर्ता तुर्की जाने वाले विमानों से इसराइल से रवाना हुए और कल शाम इस्तांबुल उतरे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कर पहला अंतरिक्ष यान बनाने का इतिहास रचा था। कॉन्स फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइंड नामक इस 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप हिग्सफील्ड AI ने इस फिल्म का बुधवार को ट्रेलर भी जारी किया। फिल्म की कहानी देवी देवताओं और राक्षसों पर आधारित है। स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टार बेस से अपने नवीनतम और सबसे बड़े स्टारशिप V3 रॉकेट की बहुप्रतीक्षित परीक्षण उड़ान को लॉन्चिंग से ठीक 40 सेकंड पहले रद्द कर दिया। 407 फुट लंबा ये रॉकेट टेक्सास से अंतरिक्ष की लगभग आधी दूरी तय करने के लिए तैयार था, लेकिन मेक्सिकन सीमा के पास स्टार बेस स्थित बिल्कुल नए लॉन्च पैड में कुछ दिक्कतें आ गईं और कंपनी के पास समय खत्म हो गया। SpaceX के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने बताया कि लॉन्च टावर आर्म को अपनी जगह पर रखने वाला हाइड्रोनिक पिन पीछे नहीं हटा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
4: एक ऐसा कार्यक्रम
3: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
4: विकास की बातें, संगीत की मिठास
3: और एक नए भारत की आवाज़।
4: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
3: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय

0: से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है चित्रपट से, इसमें सुनिए कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कबीर सिंह से, आवाज है अरिजीत सिंह और मिथुन की।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जरा हट के जरा बच के का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है वृंदा जैन, शादा फरोदी और अल्तमश फरीदी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पूर्वाहन के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम श्री जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता

0: का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले BSF की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं BSF का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही BSF की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में BSF ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु BSF पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब BSF डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही BSF ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में BSF की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ BSF ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी BSF के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी BSF की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए BSF ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमा

0: सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में

0: हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
1: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
3: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
1: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।

0: रक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
1: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
2: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह, द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज

हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई। और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद BSF को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो BSF को दे दीजिए, BSF कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए

आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है। कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे, वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में

एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगांव हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिंग का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा।

से हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने कहा कि 60

0: वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले एक साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं, और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए, हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है, उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं, और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा, और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: अब विशेष महानिदेशक Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए

0: समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह सम्मान और विश्वास अटूट है जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत
2: सज्जनों। सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: Come to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force, and well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall, and it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कॉमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। ये आकाशवाणी है।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में।

0: तो कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षावनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियां। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अजीत जी, वर्षावनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षावनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी,
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी,
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर।

0: और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
1: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
0: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ, उठो, आ जा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम

श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।

0: आसान नहीं था। उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का यह क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे, इसको भी डालो।
3: हाँ,
2: ये देखो
3: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे हमारा शहर हो।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर

0: आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVR

0: इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 kHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी का गाया फिल्म सूरज का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म जीने की राह का ये गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म दो रास्ते का यह गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

रोटी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा साया के ये गीत, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले ने। गीत के बोल राजा मेहंदी अली खान के और संगीत मदन मोहन का है।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इसके साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले

0: इन्हें समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार नीतू प्रजापति पत्नी रामलखन निवासी 368/54 क लकड़मंडी थाना सादतगंज जनपद लखनऊ से दिनांक 9 मई 2026 से कहीं लापता हैं। नीतू प्रजापति की आयु लगभग 30 वर्ष, कद 5 फुट, गोरा रंग और अंडाकार चेहरा है। ममता गुप्ता पत्नी छेदीलाल गुप्ता निवासी नथई खेड़ा सोहरामऊ जनपद उन्नाव से दिनांक 24 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। ममता गुप्ता की आयु 35 वर्ष, कद लगभग 4.5 फुट, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है। प्रियांशी सिंह पुत्री स्वर्गीय बांके सिंह निवासी ब्रजमोहनपुरी कॉलोनी थाना चिन्हट जनपद लखनऊ से दिनांक 3 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। प्रियांशी की आयु लगभग 18 वर्ष, कद 154 सेंटीमीटर, सांवला रंग और अंडाकार चेहरा है। हरवंश शुक्ला पुत्र हनुमान शुक्ला निवासी ग्राम शुक्लपुरवा गड्डी मजरा टेंडवा सृष्टिपुर थाना हरदी जिला बहराइच से दिनांक 9 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। हरवंश शुक्ला की आयु 55 वर्ष, कद 5 फुट, सांवला रंग और गोल चेहरा है और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सुमन

0: पत्नी दीपक निवासी ईट गांव थाना काकोरी जनपद लखनऊ से दिनांक 19 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। सुमन की आयु लगभग 30 वर्ष, कद 5 फुट, गोरा रंग और गोल चेहरा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से ज्यादा के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2014 के बाद हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं। ये वजीर आजम का विजन है।
2: हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
1: इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की। जनाब शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज के क्याम के जरिए राजा राम मोहन राय ने समाजी तोहियात, तगयानूसी तस्वरात और अदम मसावात के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को तोहम परस्ती से लेकर अक्ल की तरफ, बुरे तरीकों से तरक्की पसंद शऊर की तरफ ले गए। जदीद तालीम के फैलाव में उनका ताउन हमेशा कौम को मुतासर करता रहेगा। रियासती सनती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खत्ता

0: कार्गो का एक अहम मरकज बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की तरक्की करें। रियासती हुकूमत ने कल रियासती सरकारी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना दीपक कुमार ने सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से अदा किया जाएगा। इससे कबल रियासती मुलाजमीन को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए मिलेगा। रियासती हुकूमत ने 1/5 रुकनी पसमानदा तबकाती कमीशन की तकरीरी की, जिसकी सदारत रियासती हुकूमत कर रही है और मेंबरान की तकरीरी की है। इस कमीशन की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को

0: की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: मर्दमशुमारी 2027 के तहत रियासत के खुद मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज घरों की गिनती से होगा। आज से मर्दमशुमारी के लिए मुकर्र करदा शुमार कुंदगान घर घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इस सिलसिले में मर्दमशुमारी करने वाले हापुड़ में घर घर जा रहे हैं। शुमार कुंदगान मकानात को मुस्तकिल नंबर तफवीज कर रहे हैं, जिसके बाद वो मर्दमशुमारी के मकाम पर खानदान की तफसीलात जमा करेंगे और उन्हें डिजिटल तौर पर दर्ज करेंगे। मर्दमशुमारी 2027 के एक हिस्से के तौर पर रियासत में 7 मई से खुदगिनती का अमल जारी हुआ था, जो कल खत्म हुआ। रियासती मर्दमशुमारी के डायरेक्टर और चीफ मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने कहा कि अगले मरहले में आज से शुरू होने वाले मर्दमशुमारी कारकुन घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने खुद शुमारी के तहत पोर्टल पर अपनी मालूमात दर्ज की है, उन्हें अपने घर जाने पर 11 हिंसों का कोड फराहम करना होगा, जो मालूमात की तस्दीक करेगा। यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी बनाया जाएगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज किया जाएगा, जिससे तलबा में मसावात और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग मिलेगा। रियासत शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात से दो चार है। ज़िला बांदा गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के गर्म तरीन ज़िले से रहा। दीगर अज़ला में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। हमारे नामा निगार की इत्तला है कि रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। वहीं शदीद गर्मी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाख जी ने आज से सभी बोर्ड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अपराजिता।

0: सखियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अपराजिता में, जिसको लेकर हाजिर है हम यानी मैं सोनिका
1: और मैं स्नेहल, जहां हम करेंगे आपसे कुछ नए और रोचक विषयों पर बात।
0: और इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई, नदियां, जंगल, पेड़ों की शान, इससे बनता है जीवन महान।
1: मिट्टी की खुशबू, हवा का गीत, प्रकृति सिखाती जीवन की रीत।
0: सच कहा स्नेहल तुमने, प्रकृति ही जीवन का आधार है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, हवा और जल मिलकर के धरती को सुंदर और जीवंत बनाते हैं।
1: बिल्कुल, प्रकृति हमें भोजन, शुद्ध वायु और रहने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
0: मानव जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, कोई पेड़ छोटा हो या बड़ा, प्रकृति में सभी महत्वपूर्ण हैं।
1: सही कहा, क्योंकि जैव विविधता के कारण ही धरती पर जीवन समृद्ध और सुरक्षित है।
0: और देखो, बात जैव विविधता की करें तो आज यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।
1: और हर साल इसकी थीम भी अलग अलग होती है, और इस साल की जो थीम है वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना,
0: ताकि छोटे छोटे प्रयासों से जैव विविधता में होने वाले नुकसानों से बच सकें।
1: बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक

0: प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से जैव विविधता को खतरा हो रहा है।
1: इसलिए हम सभी को चाहिए कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। आगे आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करें।
0: और जब प्रकृति यानी हमारी धरती माता सुरक्षित रहेगी, तभी जीवन की बगिया सदा फलती और फूलती रहेगी।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अच्छा देखो ना सोनिका, हम रोज ही अपनी सखियों से जुड़ते हैं।
4: बिल्कुल।
3: उनकी बातें सुनते हैं और उनके साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा। और इसका सबसे बड़ा जरिया हमारा रेडियो तो है, जो हमें हर रोज एक दूसरे से बड़ी सरलता से जोड़ देता है।
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और यही रेडियो वो माध्यम है जिसने समय के साथ हमारी यादों, भावनाओं और हमारी जो भी आत्मिक जो संतुष्टि है ना, उसको भी संजो के रखा है। क्योंकि समय बदला है, तकनीक बदली, सुनने के तरीके भी बदले, लेकिन आकाशवाणी से जुड़ी आत्मीयता आज भी वैसी ही बनी हुई है।
4: और तो और, आकाशवाणी ने बीते 90 वर्षों में अनगिनत दिलों को जोड़ा भी है। कभी समाचार बनकर, कभी गीत संगीत बनकर, तो कभी अपनेपन की आवाज़ बनकर।
3: बिल्कुल। और आवाज़ की इस दुनिया में कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ सिर्फ सुनाई ही नहीं देते, बल्कि हमारी यादों, भावनाओं और जीवन का हिस्सा भी बन जाते हैं। और आज इन्हीं यादों, अनुभवों और बदलते दौर में आकाशवाणी की यात्रा को लेकर हमने बात की कुछ पुराने श्रोताओं और सखियों से। तो आइए सुनते हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम 90 बरस की आकाशवाणी, कितनी नई कितनी पुरानी। श्रोताओं से बातचीत कर रही हैं हमारी सखी।

0: सीमा अग्रवाल।
1: याद आया कुछ? आप सभी को ये धुन सुनकर, जो पुराने दौर में लोगों के लिए सुरीली धड़कन बन गई थी, और लोग एक साथ मिलकर कहीं गांव की चौपाल में या किसी के घर में या किसी के आंगन में सुना करते थे। अरे वही भूरा सा बड़ा सा डिब्बा, अच्छा आपका काला था, याद आ गया ना, और उसमें सुनाई देती थी यही धुन। वाकई कितनी नॉस्टैल्जिक है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे उसके बारे में बात करते हुए, और शायद आप मेरी आवाज से महसूस भी कर सकते हैं कि इतना अच्छा एहसास हो रहा है, और ये धुन मुझे कहीं मेरे बचपन में खींच के ले गई है। और आज आप सबसे इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के बारे में बात करना, उसके सफर के बारे में बात करना, मुझे कितनी गर्व की अनुभूति दे रहा है, क्या ही बताऊं। सच कहूं, मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ था जब मैं खुद आकाशवाणी में शामिल हुई, इसका हिस्सा बने। आज आपसे उसी आकाशवाणी की मोहब्बत, उस भूरे रंग के रेडियो की मोहब्बत, उन गानों की मोहब्बत, देवी चौधरी जैसे नाटक की मोहब्बत, ना जाने क्या क्या क्या मैं खोती जा रही हूँ, लेकिन मुझे वापस आना है, क्योंकि जितने मेरे पास यादें हैं, बातें हैं आकाशवाणी को लेकर, उतनी ही बातें औरों के पास भी हैं। तो चलिए बिना देरी करे मिलाती हूँ कुछ फोन कॉल्स, और जानती हूँ कि बाकी सबका क्या कहना है आकाशवाणी के 90 बरस के सफर के बारे में, और रेडियो सुन के प्यार के बारे में, आकाशवाणी सुन के प्यार के बारे में। आप सबको पता है आज इस प्रोग्राम के लिए मैं उन सभी लोगों से बात करने वाली हूँ, जहाँ मुझे पता है जिन्होंने आकाशवाणी को दीवानगी की हद तक प्यार किया है, रेडियो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। उनसे बेहतर आकाशवाणी के 90 बरस के सफर के बारे में कौन क्या ही बता सकता है। तो मजेदार होगा उन सबको सुनना, ये तो मुझे पूरा यकीन है। तो सुना जाए। हेलो अनुपम जी।
2: हेलो सीमा जी।
1: मुझे ना आज आपसे एक बात करनी है, और टॉपिक है हमारा 90 बरस की आकाशवाणी, कितनी नई कितनी पुरानी।
2: अरे वाह, बहुत प्यारा टॉपिक है।
1: आपसे बात करने की खास वजह ये है क्योंकि मैं जानती हूँ आप आकाशवाणी की बहुत बड़ी श्रोता रही हैं।
2: हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी श्रोता, सच में आपने सही बोला।
1: आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: मेरा आकाशवाणी से संबंध, मुझे याद है मैं जब 11-12 साल की होंगी, मेरी बुआ जी सुना करती थी।
1: हाँ?
2: और ये मैं बात कर रही हूँ 81-82 की। और उस समय हम लोग रात में ज्यादातर लाइट चली जाती थी, तो खाना पीना खाकर बस हमारा एक ही साधन होता था मनोरंजन का, कि हम ये ट्रांजिस्टर रेडियो लेकर बैठ जाते थे और बुआ जी से सुनते सुनते, वो क्योंकि उनके साथ लेट जाते थे, और वो ये बिना का गीतमाला जो कि धीरे धीरे फिर से बाका गीतमाला हुई, वहां से मुझे पता चला। फिर मुझे उस पे काफी अच्छे प्रोग्राम जैसे कभी कभी लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में आने लगे
1: जी।
2: फिर जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो समाचार के लिए वो साधन बना। फिर उसके बाद बुआ जी तो शादी करके चली गई, पर मेरा नाता उससे बना रहा।
1: अच्छा।
2: और रेडियो से।
1: हाँ।
2: इनफैक्ट सीमा जी,
1: हाँ?
2: एक मेरी लड़ाई मेरी बहन से इसी वजह से हुई थी।
1: ओह अच्छा।
2: हम दोनों रेडियो छीन रहे थे, क्योंकि उस आप जानती हैं वो जब 15-16 साल की उम्र में, तो वो कहती हैं कि नहीं मुझे अपना प्रोग्राम सुनना है। मैंने कहा नहीं, मुझे इधर अकेले सुनना है। तो दोनों ने खींचा तानी में रेडियो तोड़ दिया।
1: अच्छा।
2: फिर दोनों बैठ के रोए, और फिर किस तरह से हमने पैसे जुटाए और फिर दोबारा वो रेडियो बनवाया हमने ट्रांजिस्टर। तो इस तरह एक संबंध हमारा, इतना मधुर यादें हैं, तो जुड़ा रहा। और एक्चुअली मुझे गजलों और मुशायरों और वो जो शुरुआत जो हुई, जो मोहब्बत हुई, वो अगर आकाशवाणी नहीं होता तो शायद उस लेवल तक नहीं जाती।
1: अच्छा।
2: रेडियो से फिर हमारा टाइप रिकॉर्डर की तरफ ट्रांजिशन हुआ, लेकिन रेडियो हमेशा जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बना रहा।
1: अच्छा, तो मेरा एक सवाल है कि क्या अभी भी आप रेडियो सुनती हैं? आकाशवाणी लिसनर हैं आज भी?
2: बिल्कुल, जब भी मैं कार में जाती हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव खुद करती हूँ, तो मुझे लंबे रास्ते पे हमेशा, क्योंकि मुझे वो बहुत सारे जो इतने प्रोग्राम्स में एड्स में और बहुत ज्यादा कुछ हल्ला वल्ला नहीं पसंद आता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काम ऐसा है कि मैं थक हार के निकलती हूँ, तो मुझे कुछ सुकून वाले पल चाहिए होते हैं, तो वो सुकून वाले पल में मुझे हमेशा रहता

0: है कि मैं ये विविध भारती सुन लूं। हाँ
1: मतलब आपको आकाशवाणी याद आती है।
0: हाँ मुझे खास तौर से आकाशवाणी इसलिए याद आती है। अब जैसे अभी आजकल सखी सहेली एक प्रोग्राम आता है,
1: हाँ
0: तो मैं मेरा समय वही होता है कि मैं उस समय निकलती हूँ अपने काम के बाद से, तो अक्सर वो वाला लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को कहीं निकली तो ये वाणी लगा हुआ है। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है जो आपने बोला ना, नई भी और पुरानी भी, कि
1: हाँ
0: आज भी वो जो उसके टॉपिक्स है ना, ऐसा
1: हाँ
0: नहीं है कि पुराने हो गए हैं। और बहुत ऐसा होता है कि अरे आजकल ओटीटी के जमाने में कौन सुनता है, लेकिन उसमें अपना रूप बदला है, तो आज भी इतने
1: जी
0: कंटेम्परेरी टॉपिक होते हैं वो उस तरह
1: हाँ
0: से लिए जाते हैं कि जो दूर दराज बैठे लोग हैं। तो मैंने देखा है जब पत्रों का वो चलता है प्रोग्राम की, कितनी दूर दूर से, मैंने कभी लिखा नहीं लेकिन मैं देखती हूँ
1: अच्छा
0: कितनी दूर दूर से लोग लिखते हैं, मेल करते हैं और अपनी पसंद
1: हाँ
0: के गाने सुनते हैं। तो मुझे अपना वो जमाना याद आ जाता है जब हम हवास महल और फौजी भाइयों के लिए
1: हाँ
0: सुना करते थे। हाँ
1: मुझे लगता है रेडियो आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है।
0: बिल्कुल, अब कल भी है आज भी है, नॉस्टैल्जिया हमेशा है, क्योंकि मुझे वो सब शोरगुल नहीं पसंद। तो मुझे तो सुकून भरे वो आकाशवाणी के प्रोग्राम्स जहाँ पे बहुत मधुर गीत भी चलते हैं, चाहे वो भूले बिसरे गीत हो, चाहे, लेकिन मुझे बहुत
1: हवा
0: वो सुकून की पल देते
1: महल,
0: हैं।
1: हवा
0: हवा महल,
1: महल
0: हाँ
1: जी याद होगा,
0: बहुत सुंदर
1: चित्रपट
0: चित्र,
1: से
0: हाँ
1: है
0: चित्रपट से, यस,
1: ना,
0: क्योंकि
1: कई
0: वो चैनल वही
1: प्रोग्राम्स।
0: फिट रहता है, मतलब
1: हाँ
0: मेरा चैनल चेंज नहीं होता है, मेरी कार में वही
1: अच्छा
0: रहता
1: अच्छा
0: हमेशा।
1: तो मतलब आप बिल्कुल मानती हैं कि आकाशवाणी जितनी पुरानी थी उतनी ही नई है जमाने के बढ़ते दौर के साथ।
0: आकाशवाणी के साथ भी वही है कि गोल्ड की तरह जितनी पुराना है वो उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत बढ़ जाती है।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सीमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: हमें भी, थैंक यू। हेलो सुनीता मैम, कैसी हैं?
2: नमस्कार जी सीमा जी, मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसी हैं।
1: अच्छा, मैं अच्छी
2: हाँ
1: हूँ। अच्छा ये बताइए, आकाशवाणी को लेकर आपकी क्या यादें हैं, कैसी यादें हैं?
2: अरे बचपन में तो बहुत सुना रेडियो, बिना का गीतमाला, हवा महल, क्योंकि उस टाइम टीवी तो होते ही नहीं थे, तो
1: जी
2: क्योंकि शादी को भी तो 53 साल हो गए हैं, उसके पहले सुनते थे। कॉलेज टाइम में भी पता चला रात को 9 साढ़े 9 बजे बिस्तर पे लेट गए और ट्राई से चल रहा है और जो प्रोग्राम आ रहा है वो सुन रहे हैं हम वहां पे। थैंक
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: यू जी,
1: आपको
2: ओके।
1: पता है, अब मैं जिनको फोन मिलाने वाली हूँ, जिन्होंने अपनी बुआ का जिक्र किया था कि उनको अपनी बुआ की वजह से रेडियो सुनने का शौक हुआ, जी हाँ, ये वही वाली बुआ जी हैं उनकी। और देखिए, मैंने उनसे भी बात की, आजकल वो नोएडा में रहती हैं, जानते हैं। तो जब उनकी भतीजे से बात की तो मैंने सोचा बुआ जी को क्यों छोड़ दिया जाए, जिनकी वजह से भतीजी में आकाशवाणी से प्यार के, रेडियो से प्यार के बीज पड़े। तो चलिए सुनते हैं बुआ जी को। हेलो
2: हेलो,
1: जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी।
2: मेरा नाम किरण सिंघल है। थैंक
1: अच्छा किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: यू।
1: मुझे पता लगा आप रेडियो बहुत शौक से सुना करती थी,
2: हाँ
1: तो
2: जी,
1: कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ?
2: हाँ जरूर जरूर।
1: जी
2: एक्चुअली जो जब मेरा बचपन था उस समय इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, मुझे पिक्चर देखने का बहुत ज्यादा शौक था,
1: अच्छा
2: उसी वजह से मैं रेडियो के साथ जुड़ गई। मुझे गाने सुनना, हवा महल, बिना का गीतमाला जो पहले आती थी, और उसके अलावा मैं मैच की कमेंट्री बहुत ही इंटरेस्ट के संग सुनती थी। गर्मी के दिनों में खास तौर से मैं अपने छत पर लेट के आराम से उसको सुनती रहती थी गानों को,
1: जी
2: तभी मुझे शौक लगा। बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां आती थी, और इसके साथ साथ जो है ये गाने इतने अच्छे होते थे पिक्चरों के, जो पसंद आते थे वो बार बार सुनने का मन करता था, तो एक यही माध्यम था।
1: तो किरण जी ये बताइए, रेडियो से जुड़ी आपको कोई अलग सी बात याद आती है?
2: हाँ एक्चुअली जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरा भाई ट्रांजिस्टर लेके आया था, तो वो ट्रांजिस्टर, वो कानपुर रहते थे और हम लोग उस समय इटावा में रहते थे, तो
1: हाँ
2: जब भाई मेरे संडे को आते थे और मंडे को चले जाते थे, तो उस बीच में मैं उस ट्रांजिस्टर को बंद करके रख देती थी जिससे उनको पता ना लगे और वो गुस्सा ना हो, और
1: अच्छा
2: उसके बाद मंडे को मैं उसको फिर से सेल डाल के अपना चालू कर लेती थी। ये सिलसिला 4-5 साल तक चलता रहा है ऐसे ही। जब भाई को ये पता लग गया कि मैं इसकी इतनी ज्यादा शौकीन हूँ, तो फिर उन्होंने

0: मैं कहा कि अब तुम इसको इस तरीके से चोरी छुपे मत सुना करो, खूब आराम से सुनती रहा करो, कोई दिक्कत नहीं।
1: मतलब भाई ने आपको उपहार
0: हाँ,
1: में रेडियो सुनने की परमिशन दे दी।
0: परमिशन दे दी,
1: हाँ
0: और फिर मैं अपने खूब दिल खोल के सुनती रहती थी। फिर
1: आपने
0: जी हाँ जी
1: कहा गाने सुनने का बहुत ज्यादा शौक था,
0: जी
1: तो
0: हाँ।
1: ऐसे में कोई अपनी पसंद का गाना गुनगुना दीजिए
0: अच्छा, तो मेरी आवाज तो इस लायक नहीं है, फिर
1: फिर
0: भी
1: भी। हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
1: क्या बात है, आपने इतना बढ़िया गाना चुना है और ये गाना आपके रेडियो के प्यार के लिए समर्पित लग रहा है। आपको रेडियो से तब भी प्यार था और आपको रेडियो से आज भी प्यार है। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।
0: धन्यवाद।
2: अब इन फोन कॉल्स के बाद मैं सोच रही हूँ कुछ लोगों से जाकर खुद मिलूं और उन्हें सामने से देखूं कि जब वो आकाशवाणी के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उन्हें खुशी कितनी है, और ढेर सारी बातें तो और पता लग ही जाएंगी। तो चलिए चलते हैं कहीं, कहाँ सरप्राइज है।
3: श्रोता सखियो, मेरे साथ अभी हैं अंजलि जी और अंकिता जी। क्यों ना उनसे जाने कि आकाशवाणी के इस सफर पर वो क्या कहती हैं। अंजलि जी नमस्ते।
4: नमस्ते मैम। मैं अंजलि। मुझे याद है कि रेडियो का सफ़र मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे कि मैं बचपन में देखती थी कि मेरे बाबा जी जो थे वो रेडियो सुनते थे, तो वो ज़्यादातर सारी समय समाचार लगाए रहते थे, तो मुझे
0: अच्छा
4: अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे मौका मिलता था तो मैं उस पे गीत चला देती थी। एक दिन मैंने उसकी स्ट्रिप को बहुत ऊपर खींच दिया और वो टूट गया।
1: यानी कि एंटीना को।
4: यस मैम। उसके बाद फिर मुझे इतनी डांट पड़ी, लेकिन जल्द ही मेरे घर में ट्रांजिस्टर आ गया मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: अच्छा, रेडियो पे आपका पसंदीदा प्रोग्राम कोई याद आता है?
4: उस समय युगवाणी आता था और युगवाणी में युवाओं से रिलेटेड बातें बताई जाती थी, उनके विचारों को बताया जाता था, तो वो सुनने में अच्छा लगता था। और कृषि दर्शन आता था, उसमें भी कृषि से, चूंकि मेरे बाबा जी किसान थे, वो बहुत सुनते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि किस तरह से बीज बोए जाते हैं या उनको किस तरह से उगाना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए, ये सब उस समय बताते रहते थे उसमें।
1: तो यानी कि आपके बचपन से आपको रेडियो का शौक हो गया।
4: यस।
3: अब बात करते हैं अंकिता जी से, उनसे जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस के सफर के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना है और उनकी यादें क्या हैं रेडियो से जुड़ी हुई।
5: आपने हमें रेडियो की याद दिला दी, क्योंकि रेडियो ऐसी चीज़ थी कि हम ना देखते हुए उस बातों को अनुभव करते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी इसमें जो मुझे बहुत पसंद थी, जैसे फौजी हमारे बॉर्डर पर रहते हैं,
1: यानी आप जवानों के लिए कार्यक्रम
5: हाँ,
1: की बात कर रही हैं,
5: कि फौजी कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके जब गीत आते थे उन गीतों में पूरी तरह खो जाती थी, क्योंकि उनकी दूर बैठे उनके बारे में उनके मन में क्या चल रहा है उसको महसूस करके मुझे अच्छा भी लगता था और रोना भी आता था। लेकिन बाबा कहते थे बच्चों को रेडियो से दूर रखो, लेकिन उस समय रेडियो हमारे बहुत ही एक मनोरंजन का साधन था। वो उस एक एक खबर, यहाँ तक हमें विज्ञान की खबरें सुननी हो, कहीं क्या हुआ है, उसका सब हमें पता चलता था।
1: यानी कि रेडियो ने आपको मनोरंजन भी दिया
5: हाँ।
1: और ज्ञान भी दिया
5: हाँ।
1: और डांट भी पढ़वाई।
5: डांट भी पढ़वाई।
1: अच्छा, अभी रेडियो सुनती है कभी?
5: छोटा स्टेशन अभी भी है, हमने विविध भारती की जो भूले बिस्तरे गीत कभी आ गए तो हम जरूर सुनते हैं। अभी भी मेरी आदत ये है, क्योंकि अभी भी हमारे घर में मेरे ससुर है, उनके पास है।
3: अभी मैं आई हूँ एक कॉलेज के ऑडिटोरियम में और मैं देख रही हूँ कि सामने 4 टीचर्स बैठी हैं, उनके हाथ में रेडियो है, तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि ये रेडियो वो भी स्कूल टाइम में लेकर कर क्या रही हैं। चलिए चलती हूँ उनके पास और पूछती हूँ कि रेडियो लेकर वो करने क्या वाली हैं। नमस्ते जी। नमस्ते।
6: नमस्ते।
7: नमस्ते।
3: अच्छा ये बताइए, ये रेडियो आपके हाथ में इस समय स्कूल टाइम में क्यों?
8: एक्चुअली हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है, आ अब लौट चलें, जिसमें हम पुराने दशक में जो भी जैसे टीवी था, फोन था, और हमारा स्पेशल हमारा रेडियो बच्चों को बताना चाह रहे हैं। उससे हम लोग कंटेंट निकाल रहे हैं कि बच्चों को क्या समझाएंगे कि मोबाइल से हम किस तरीके से दूर रह सकते हैं।
3: वाह, ये तो बड़ा अच्छा कॉज है आपका। आप खुद रेडियो का शौक रखती हैं?
9: बहुत शौकीन है हम लोग, और अभी तो बच्चे निकले तो हम लोगों ने सोचा कि चलो न्यूज ही सुन लें।
3: सारी बातों में आप लोगों का नाम पूछना तो भूल ही गई, पहले नाम भी बता दीजिए।
8: मैं बबली।
10: मैं भावना।
11: शालू।
12: तरन्नुम।
3: तो तरन्नुम जी,

0: बताइए, आपके हाथ में रेडियो है, बड़े प्यार से गोद में लेके बैठी हैं। मुझे देख के आप लोगों ने रेडियो ऑफ कर दिया। तो रेडियो आप सिर्फ अभी सुन रही है कि आपको कभी रेडियो का शौक रहा भी है?
1: रेडियो का शौक मुझे रहा है बचपन में, मेरे फादर जब सुनते हैं उनको मैं देखा करती थी तो मैं भी सुना करती थी।
0: शालू जी, रेडियो का आपको कितना शौक है?
2: बहुत शौक है मुझे तो, अभी तो वही बताया मैंने अभी कि हम लोग अभी तुरंत जब हम लोगों ने न्यूज ओपन करी तो सुनाई दिया कि गर्मी की वजह से ऑरेंज अलर्ट हो गया प्रदेश में, तो जानकारियां तो हमें बहुत मिलती है उससे। बस ये है कि हम लोग जो है अब रेडियो की तरफ ना जा करके अब सोशल मीडिया की तरफ बच्चे बढ़ गए, बस उन्हीं को डाइवर्ट करने के लिए हम लोगों ने जो है ये शुरू किया है।
0: मैं फिर से कहूंगी ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है जो आपने बोला ना कि प्रोग्राम बना रहे आप लौट चलें, तो आप लौट चले से तो मुझे वो दौर याद आता है बबली जी, जब हम पुराने जमाने में सुना करते थे, तो आप बताएंगे बबली की आपकी कुछ पुरानी वाली यादें?
1: अनेक यादें हैं, मैं रेडियो के लिए क्या कहूँ, आकाशवाणी का, मैं खुद आकाशवाणी का हिस्सा रह चुकी हूँ।
0: सच में?
1: हाँ, मैं आकाशवाणी का एक कार्यक्रम आता है दोपहर में 12:05 पे, कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए।
0: अच्छा, मैं कब की बात बता रही हूँ?
1: ये 1989 की बात है ये।
0: अच्छा,
1: तो जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमए संस्कृत में कर रहे थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही किसी ने कहा कि जब हम लोग संस्कृत में कर रहे हैं तो चलो आकाशवाणी चलो चलते हैं देखते हैं वहाँ क्या है। हम लोग गए, हम लोगों ने अपना नाम लिखवाया और अगले दिन हमारे पास लेटर हमको मिल गया कि आपका प्रोग्राम होना है। उसमें एज ए टीचर हमें एक टॉपिक लिखना था, उसमें दो तीन बच्चों का भी कंटेंट हम ही को लिखना था। हमने अपना लिखा, बच्चों का लिखा और जाके वहां पर प्रोग्राम किया। इतना रोमांचक अनुभव था, इतना अच्छा लगा कि मैं अभी भी मैं बता रही हूँ आपको, मेरे
0: सच में मैं देख रही हूँ आपका चेहरा खिल उठा ये बात बताते बताते। और मतलब अनूठी सी बात है कि आप 89 के दौर में आकाशवाणी लखनऊ से खुद जुड़ी
1: जी,
0: है ना,
1: जी,
0: रही
1: जी,
0: हैं।
1: जी,
0: तो वाकई बहुत अच्छी बात है। आपका चेहरा देखिए चमक उठा है। मैंने सच कहा ना, इनका चेहरा चमक उठा है।
2: बिल्कुल सही बात है।
3: आपने अच्छा बताया नहीं बबली जी इससे पहले हम लोगों को ये बात?
0: देखिए बबली जी छुपा रही है। अच्छा भावना, आप क्या कहती है रेडियो के बारे में?
4: रेडियो में मुझे याद आता है जब हम लोग खाना वाना खाने के बाद जब सोने चलते थे, तब अक्सर मेरी दीदी या पापा लोग रेडियो में पुराने पुराने गाने आते थे, वही सुनते थे, इतने अच्छे लगते थे हम लोगों को। और रात में वो गाने सुनते सुनते खुले आसमान में बहुत अच्छी सी नींद आती थी हम लोगों को।
0: तरन्नुम जी आप क्या कहेंगी?
5: ऑथेंटिसिटी आज भी बरकरार है, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं बट वो जो न्यूज़ वगैरह देते हैं मतलब इररिलेवेंट, लेकिन हम अगर से यहाँ पे बैठ के न्यूज़ सुनते हैं तो आपको काम की न्यूज़ मिलेगी और आपकी जीके बढ़ेगी।
0: तो ये आप ये बताइए कि क्या आप ये मानती कि रेडियो आज भी उतना ही नयापन लिए हुए है?
2: कितना मतलब परिवर्तन हुआ है पुराने से लेकर के आज तक। आज भी आप देखें तो आकाशवाणी का अपना ही जो है नया रूप है, समय के साथ बदल गया। हाँ बिल्कुल, जलवा तो है ही है, आज भी इसका जलवा कायम है। FM रेनबो बहुत फेवरेट रहा है मेरा हमेशा से।
0: अच्छा,
2: बहुत
0: कुछ याद आता है, संडे को भी एक स्पेशल चीज आती है।
4: हाँ, उसमें ये होता था कि एक मूवी की स्टोरी की समरी बताई जाती थी, तो हम लोग बहुत इंतजार करते थे उस दिन संडे का कि आज कौन सी स्टोरी सुनाई जाएगी, और मतलब कि बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को सुनने में।
0: मेरे ख्याल से उस प्रोग्राम का नाम है सिने चित्रहार।
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, स्नेह चित्रहार।
0: ऐसे लग रहा है मेरा जनरल नॉलेज टेस्ट हो रहा है,
3: रिवीजन हो गया।
1: यस बहुत
4: जी, बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो रही। जी जी,
0: वो रेडियो का एंटीना लंबा वाला
4: एंटीने को हम लोग क्या करते थे, कहीं नेटवर्क गड़बड़ सेट करते थे, कहीं इधर से आवाज आ रही, इधर कहीं उधर से आवाज आ रही है।
0: अच्छा ये बताइए, रेडियो से प्यार तो आप लोग का बहुत दिख रहा है, तो रेडियो से जुड़ा कोई गाना जो आपको उस दौर में आपने सुना हो, बबली जी को सुनाई?
4: बताते
1: हैं, जन्म जन्म का साथ है
6: रेडियो से आपका,
3: बिल्कुल से
6: आपका,
3: नहीं अब हम सबका।
0: देख रहे सके उनकी चूहल बाजी की, उनको गाना भी इन्होंने पूरा गाने नहीं दिया और कह रही है रेडियो से आपका। मुझे लगता है रेडियो से हम सबका नाता बहुत पुराना है और बहुत गाढ़ा नाता है, है ना
4: जी।
0: और सच में आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिल के, आप लोगों का रेडियो देख के, और देखिए मैंने आप लोग की रेडियो वाली तस्वीर भी खींच ली है, और ये आपके लिए सुनहरी याद रहेगी कि कभी रेडियो के साथ आपने तस्वीर खिंचवाई थी, है कि नहीं?
3: यस,
2: सही बात है, सब खिंचवाते
3: हैं,
0: सही बात है। चलिए थैंक यू, आप लोगों ने हमसे बात की और ये प्रोग्राम में आपने शिरकत की, ये सब

0: मैं बहुत उपयोगी रहा हर मायने में, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: सखियो, जाते जाते मैं यही कहूंगी, चाहे इस दौर में तमाम मनोरंजन के साधन आ गए हैं, लेकिन जो जगह आकाशवाणी की है उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आकाशवाणी बहुत प्योर है, उसमें डेप्थ है, उसमें नॉलेज है, उसमें एंटरटेनमेंट है, जिसमें वल्गैरिटी नहीं है, जिसमें छिछलापन नहीं है। हम बेफिक्र होके पूरे परिवार के साथ आकाशवाणी का लुत्फ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी में सत्यता है, संस्कार है, समाज को ऊंचा उठाने की ललक है। हमारी आकाशवाणी का मोटो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसी है आकाशवाणी। और इसका 90 बरस का सफर कितना हसीन है, और कितना हसीन और भी होगा आगे जाकर, ये शायद शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। हाँ, महसूस किया जा सकता है। तो गुजारिश करूंगी आप सभी से, आकाशवाणी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और इसी बात के साथ सीमा अग्रवाल लेती है आपसे विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ को।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम 90 बरस की आकाशवाणी, कितनी नई कितनी पुरानी, जिसमें हमारी सखियों और कुछ पुराने श्रोताओं से बात करी हमारी सखी सीमा अग्रवाल ने।
4: बिल्कुल, और जिसे सुनकर हम ये कह सकते हैं सोनिका कि समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन आकाशवाणी की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में उसी अपनत्व के साथ गूंज रही है।
3: देखो स्नेहिल, कितनी गर्मी पड़ रही है ना, ऐसा लगता है एसी भी काम नहीं कर रहे हैं।
4: अब भाई सोनिका, गर्मी की बात करें तो भाई तापमान 44-45 डिग्री के ऊपर जा रहा है, तो भाई ऐसे में एसी भी क्या काम करे। अब ऐसे में तो लगता है कि जैसे शरीर का पानी भी सूखता सा जा रहा है।
3: बिल्कुल, और देखो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि जितना हो सके उतना पानी पिए और खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं।
4: देखो बात तो तुमने ठीक कही सोनिका, पर पानी का तो हम तब पर्याप्त उपयोग कर पाएंगे ना जब हम उसका संचयन भी करें।
3: हाँ
4: बात सही है ना।
3: बिल्कुल,
4: और देखो ना, अब अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाने वाले हैं हम सब, जिसमें हमारी इस बार की जो थीम है ना वो है क्लाइमेट एक्शन, जिसका उद्देश्य है जलवायु के संकट के प्रति दुनिया को एकजुट करना,
3: यानी कि मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली।
4: बिल्कुल, मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा मौसम परिवर्तित हो रहा है हमें हमारी जीवन शैली भी उसके अनुकूल बदलनी होगी।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि सोनिका पर्यावरण से हम लेते तो बहुत कुछ हैं पर देते शायद ना के बराबर हैं।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने, प्रकृति हमें जल वायु मिट्टी पेड़ पौधे और भी बहुत सी चीज़ें वरदान स्वरूप देती है ना।
4: बिल्कुल,
3: और तो और पेड़ पौधों से हमें फल फूल लकड़ियाँ कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, पर हम हैं कि उन्हें काटते जा रहे हैं।
4: बात बिल्कुल सही है, और इस तरह प्रकृति का दोहन जो है ना कहीं हमारी ही जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें पानी की, तो उसके बिना तो भाई हमारा जीवन ही संभव नहीं है, पर देखा जाए तो हम उसके प्रति भी सजग नहीं हैं।
3: बिल्कुल सही बात कही तुमने स्नेहिल, कि जल का संचयन करें ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और इसको बचाने के लिए यदि हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ना, तो इससे संचयन करने में बहुत मदद भी मिलेगी।
4: और शुरुआत यदि हम अपने घरों से ही करें सोनिका, तो शायद इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है।
3: बिल्कुल सही बात कही तुमने, देखो जैसे हम घरों में जब हम ब्रश करते हैं या दाढ़ी बनाते हैं और भी बहुत से दैनिक कार्य करते हैं, तो उसमें हम नल का उपयोग तो करते हैं लेकिन नल को खुला छोड़ देते हैं, ऐसी तो ऐसा करने से बचें। अगर हम शावर का प्रयोग कर रहे हैं तो बाल्टी का उपयोग करें, ताकि जल का दुरुपयोग होने से बचें।
4: बिल्कुल, और एक बहुत ही आम बात देखा जाए तो आजकल सभी घरों में लगभग आरओ वाटर का इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें देखा होगा तुमने कि हमारे पास जो पानी का स्रोत है ना वो हम प्योरीफायर करके पीने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके एवेज में हम बहुत सारे पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, जो पीछे जो वेस्ट वाटर निकलता है, अगर उसको भी हम संचित करके पेड़ पौधों में या घर की धुलाई साफ सफाई में इस्तेमाल करें तो भी हम जल को संचय कर सकते हैं। भाई
3: ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई है ना, देखो गर्मी के मौसम में शरीर तो झुलसता है, पेड़ पौधे भी झुलस जाते हैं है ना, ऐसे में तुम्हारा ये उपाय बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा और ये पेड़ों के लिए वरदान भी साबित होगा। देखो ऐसे मौसम में सब्जियों और फलों का सेवन करें और साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें

0: जो कि शरीर के लिए फायदेमंद हो। अब तो मैं यही कहूंगी कि धूप की चिट्ठी आई है, संग अपने सीख भी लाई है। शरीर को संभालो, छाव में कुछ पल बिताओ, फलों की मिठास अपनाओ, नारियल पानी से सुकून पाओ, साथ में गर्मी के गीत भी गुनगुनाओ।
1: बिल्कुल, और से देखा जाए सोनिका, तो बात करते करते हमारा समय जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है, और समय ऐसा हो गया है कि हमें सखियों से लेनी पड़ेगी विदा। तो भाई हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी स्नेहिल को
0: और मुझे यानी सोनिका को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपराजिता। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी दोस्तों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म आई मिलन की बेला के इस गीत के साथ, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का है। इसे सुनना चाहते हैं हेड कांस्टेबल लक्ष्मण प्रसाद, हेड कांस्टेबल विनेश यादव, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, शिवम देवांश माही, CISF दिल्ली से।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। सुनने का अनुरोध किया है एक्स कंपनी कमांडर फतेहपुर बाराबंकी से अशोक कुमार सिंह ने। तो लीजिए सुनिए आपके पसंद पर फिल्म राजकुमार का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नीला आकाश से स्वर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। CRPF नई दिल्ली से हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, अनामिका अनुराग और सुनीता यादव। तो लीजिए सुनिए आपके अनुरोध पर फिल्म नीला आकाश का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्रोफेसर से स्वर मोहम्मद रफ़ी के सुनना चाहते हैं आप सब, अमरजीत श्रीनिवास, आदर्श, अनमोल, फिरोज़ खान, राकेश कुमार वाराणसी रिजर्व पुलिस लाइन से, रामजीत अनुराग, आयुष शौर्य, विराट अशोक, सुरेंद्र शर्मा, केशव शर्मा, गौरव शर्मा, हर्षद सिंह इंदिरानगर लखनऊ से, सुमित श्रीवास्तव, मोहित सिद्धू, संजय सिंह, राम अवध यादव, देवेंद्र जी हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन प्रयागराज से। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म प्रोफेसर का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंखी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना शाहिर लुधियानवी की और संगीत रवि का है। इसे सुनना चाहते हैं आप सब। पुलिस लाइन बाराबंकी से रंजीत सिंह मुन्नी सिंह, पलिया मसूदपुर बाराबंकी से अंजनी कुमार, उजरवारा पुरवा फतेहपुर बाराबंकी से आदर्श वर्मा, सीतापुर से वसंत कुमार। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म आंखी का ये गीत।

फौजी भाइयों, इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के

0: आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम

0: एम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में

0: जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईदुल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर रीमा देवी से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है मेंथा की फसल का आसवन और विपणन। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय मेंथा की फसल खेत में है। जहां फसल तैयार है वहां कटाई और आसवन की तैयारी है। तो मेंथा की फसल में आसवन यानी डिस्टिलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी सावधानियां आसवन में रखनी है और मेंथा के तेल की मार्केटिंग कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मेंथा की फसल इस समय खेत में है, तो आसवन के पहले कटाई के समय कौन कौन सी खास सावधानियां हैं?
4: सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो मेंथा की फसल है हमारे किसान भाइयों की, वो अभी खेत में खड़ी हुई है। और सबसे पहले तो सावधानी मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वे सिंचाई जो है 8 से 10 दिन पहले सिंचाई अपने खेत में करना बंद कर दें,
3: यानी कटाई के 8 से 10 दिन पहले।
4: जी, और कटाई के बाद जो फसल को छायादार स्थान पे सुखाए, फसल को ढेर में ना रखे, समान रूप से फैलाए। और 1-2 दिन अगर वो अच्छे से सुखा लेते हैं अपनी फसल को, उससे क्या होता है कि तेल की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी किसान भाइयों से कि जो भी उनकी मेक श्योर कर लें कि जो मेंथा की फसल है जो भी कटाई के बाद आई है उसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। अगर नमी रहेगी तो उसमें जो तेल का आसवन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा।
3: अक्सर जो किसान भाई बहन मेंथा उत्पादन से जुड़े हैं तो उनके पास पारंपरिक जो आसवन इकाइयां हैं वो हैं, उनके चलते ढेर सारी समस्याएं आती हैं, तो इसमें कौन कौन सी सावधानी की जरूरत है डॉक्टर साहब?
4: देखिए डॉक्टर साहब, जो पारंपरिक आसवन इकाइयां हैं, सबसे पहली समस्या तो उनमें ये आती है कि जो आजकल हम लोग गांव में भी देखते हैं कि टंकी फटने जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को पता नहीं होता है, वो अच्छे से जो उनका एक तरह से प्रेशर गोज है या सेफ्टी वॉल्व है वो अच्छे से नहीं लगाते हैं, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को मिलती है और अधिक समय और ईंधन की खपत भी होती है। इसी के साथ साथ जो तेल की मात्रा है वो बहुत ही कम उनको मिलती है
3: और गुणवत्ता
4: में भी कमी आती है। और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल हम देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की, ये भी देखने को मिलती है।
3: और इसके लिए केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान यानी सीमैप ने उन्नत आसवन इकाई का विकास किया है, अगर किसान भाई बहन इसको अपनाएं तो कैसा रहेगा?
4: ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए सीमैप ने जो यूनिट है वो भी लगाने का प्रावधान उसमें रखा है। तो अगर वो उन्नत आसवन तकनीक अपनाएंगे तो उससे 20-30% जो ईंधन की बचत है वो भी रहेगी, कम समय में अधिक उत्पादन होगा, उच्च गुणवत्ता वाला तेल उनको मिलेगा और प्रोडक्शन भी उनके रहेगी। उसमें वो स्टेनलेस स्टील पाइप या अलग जो प्रॉपर भाप का जो उचित प्रवाह है वो भी बना रहेगा।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कटाई के पहले और आसवन के पहले

0: बहुत सारी सावधानियां हैं। तो मेंथा का जो डिस्टिलेशन है, तेल निकालने की प्रक्रिया है, उसके पहले फसल तैयार करना भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: तो इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं?
1: देखिए सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये तैयार करना जरूरी है कि जो भी फसल वो लगा रहे हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो सल्फर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सल्फर का इस्तेमाल जरूर करें,
0: यानी
1: जिससे
0: खड़ी
1: तेल
0: फसल में।
1: खड़ी फसल में, जिससे उनकी जो तेल की गुणवत्ता है वो भी बनी रहेगी, जो मात्रा है वो भी अच्छी रहेगी। दूसरी चीज, टंकी की वो नियमित सफाई करें आसवन करने से पहले। बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, डायरेक्टली उसमें डाल देते हैं, उससे एक तरह से जो गुणवत्ता है, अशुद्धियां हैं, वो भी तेल में आ जाती है। बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तेल निकालने के लिए, उनको लगता है कि अगर वो यूरिया डालेंगे तो उनकी जो तेल की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि वो कोई भी ऐसी, अपने विवेक से कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना अपनाएं जो उनके लिए घातक सिद्ध हो, जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है।
0: और आसवन के पहले 1-2 दिन अगर फसल को सुखा लें।
1: बिल्कुल, सुखा करके जो तेल की गुणवत्ता है वो भी बेहतर हो जाती है, और उसी के साथ साथ जो तेल की मात्रा है वो भी अच्छी क्वालिटी का उनको तेल जो है मेंथा का निकलता है, अगर वो अच्छे से उसको सुखा लेते हैं तो।
0: और आसवन टंकी में भी फसल को बहुत सावधानी से भरना होगा।
1: बिल्कुल, सावधानी पूर्वक ही उसको भरना है, ऊपर तक भरना है, कोई भी भाप के माध्यम से वो पहले तो अच्छी तरह जब सफाई कर लेते हैं टंकी की, उसके बाद ही आसवन टंकी में वो अपनी फसल को भरे, और एक समान रूप से भरे, कहीं पे छोड़े ना, यूनिफॉर्मिटी रहे उनकी जो फसल भरने का जो तरीका है वो अच्छे से अगर उसको भरेंगे तो उसमें कोई भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है।
0: डॉक्टर रीमा, जहाँ मेंथा की तेल पेराई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो सुरक्षित और वैज्ञानिक आसवन के लिए भी कुछ सावधानियां होंगी।
1: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी हमारे किसान भाइयों का, जो हमारे भाप का उचित प्रवाह है वो प्रवाह बनाए रखें, सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल जरूर करें, प्रेशर गोज लगाएं, और मैं जो सजेस्ट करना चाहूंगी वो यही करूंगी कि जो स्टेनलेस स्टील के पाइप है और कंडेंसर है उनका प्रयोग करें, टंकी की नियमित सफाई करें।
0: ये सुरक्षित है?
1: जी बिल्कुल, और ठंडे पानी का निरंतर उपयोग करते रहें ताकि जो एक तरह से क्वालिटी है तेल की वो बनी रहेगी। अगर वो पानी चेंज नहीं करेंगे तो उससे जो मेंथा ऑयल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी।
0: और आसवन से पहले,
1: आसवन से पहले जो टैंक को साफ करके पानी भर के भाप के माध्यम से अच्छी तरह से सफाई कर लें ताकि जितनी भी अशुद्धियां हैं वो हमारे तेल से अलग हो जाएं और तेल की जो गुणवत्ता है वो बेहतर बनी रहे।
0: और जब तेल की गुणवत्ता अच्छी होगी तभी उसकी अच्छी मार्केटिंग होगी, अच्छा भाव मिलेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छा भाव तभी मिलेगा जब उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, सारे पैरामीटर्स जो हैं उसके अच्छे रहेंगे, जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे से अगर करेंगे हमारे किसान भाई तो वो, उनको जाहिर सी बात है कि जो भी उनकी दाम है वो अच्छे दामों में अपना तेल बेच पाएंगे।
0: डॉक्टर साहब, गुणवत्ता की बात चली है तो तेल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान भाई बहन करें क्या?
1: देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि आसवन के बाद तेल को सबसे पहले तो साफ कपड़े से छान ले, कोई भी पानी या अशुद्धियां उससे अलग हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा अधिक पानी है, अगर किसान भाई के तेल में पानी आ गया है किसी भी कारणवश, तो उसमें हाइड्रेट सोडियम सल्फेट डाल करके पानी की मात्रा को अलग कर लें, तेल की मात्रा अलग हो जाएगी। दूसरी चीज, जो हमारा भंडारण का पात्र है उसको भी ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जो प्लास्टिक कंटेनर है उनमें कदापि भंडारण ना करें, और साफ सूखे स्टील के जो कंटेनर है उनका प्रयोग करें। जितना तेल हो उतने ही उपयुक्त भंडारण पात्रों का उपयोग करें, पूरी तरह ऊपर तक भरकर पैक करें ताकि हवा ना रहे और तेल की गुणवत्ता भी है जो सुरक्षित बनी रहे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो धूप और गर्मी से इस तेल को बचाए रखें, छायादार जगह पर इसको एक तरह से सुरक्षित कर, बिल्कुल ठंडी और छायादार जो जगह है उस पर अगर इसको रखेंगे तो तेल लंबे समय तक अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, मेंथा की फसल के आसवन की बात हो गई, अब उसकी मार्केटिंग की भी बात कर ली जाए, विपणन की बात कर ली जाए, क्योंकि किसान भाइयों बहनों को जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको अच्छा भाव मिले और वो तेल बेच दें।
1: देखिए डॉक्टर साहब, ये जो जरूरी पॉइंट है आपने पूछा है, जो विपणन है, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को देखना है कि मंडियों में जो उनके व्यापारी हैं उनसे संपर्क करें, गुणवत्ता आधारित बिक्री करें, उचित ग्रेडिंग अगर पैकेजिंग वो अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो उनका मूल्य है उनको अच्छा मिलेगा तेल का। सामूहिक विपणन अगर वो करेंगे किसी FPO के माध्यम से या सहकारी समिति के माध्यम से, वो भी एक अच्छी पहल हो सकती है। बाजार की भाव की जो जानकारी है वो नियमित रूप से हमारे किसान भाई लेते रहें। सबसे बड़ी समस्या विपणन में ये देखने को मिलती है कि जो बाजार में कृत्रिम मेंथा है, यानी कि

0: आर्टिफिशियल मेंथा है,
1: यानी उसकी सिंथेटिक
0: जो आपकी मेंथा है वो बड़ी उपलब्धता के कारण जो हमारे किसान भाई है उनको एक अच्छा भाव नहीं मिल पाता है, तो इससे वो सचेत रहें और अपनी जो जितनी भी चीजें हैं उनको फॉलो करते रहें।
1: और गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो अच्छा भाव होगा, अच्छी मार्केटिंग होगी। डॉक्टर रीमा, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मेंथा की फसल के आसवन और विपणन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी डॉक्टर साहब, मेरा मोबाइल नंबर है 9559377316, 9559377316।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों
0: को? किसान भाइयों को मैं यही एक सुझाव देना चाहूंगी चलते चलते कि जो हमारे किसान भाई है वो FPO के माध्यम से या सहकारी समितियों के माध्यम से पूरा सामूहिक बिक्री करें। सरकारी संस्थानों जैसे CMAP, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों से तकनीकी जानकारी लें, प्रशिक्षण लें और जितनी भी प्रसंस्करण संबंधी मार्गदर्शन है वो वहीं से प्राप्त करें।
1: डॉक्टर रीमा, आज आप कार्यक्रम में आई और मेंथा की फसल का आसमन कैसे हो और इसका विपणन कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके सुझाव पर किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेंथा की फसल का आसमन और विपणन, अभी आप डॉक्टर रीमा देवी से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार रागिनी प्रजापति पुत्री ठाकुर प्रसाद प्रजापति निवासी जोरीताल थाना सेवणा जनपद दतिया मध्य प्रदेश से दिनांक 23 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। रागिनी प्रजापति की आयु 18 वर्ष, कद 5 फुट, सांवला रंग और सामान्य शरीर है। श्रीमती शैल कुमारी पत्नी रामदीन निवासी ग्राम गढ़ी मवैया थाना बिजनौर जनपद लखनऊ से दिनांक 25 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। श्रीमती शैल कुमारी की आयु 30 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, गोरा रंग और सामान्य शरीर है। महताब रसूल पुत्र अमानत रसूल निवासी 397/57 तकिया हाजी नुसरत अब्दुल अजीज रोड थाना सादतगंज जनपद लखनऊ से दिनांक 22 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। महताब रसूल की आयु 47 वर्ष, कद 5 फुट, गेहुआ रंग और अंडाकार चेहरा है और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शिवानी रावत पुत्री देवी प्रसाद निवासी मेरक नगर थाना निगोहा जनपद लखनऊ से दिनांक 1 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। शिवानी रावत की आयु 18 वर्ष, कद 5 फुट, गोरा रंग और औसत कद है। ईशान अहमद खान पुत्र इश्तियाक अहमद खान निवासी मकान नंबर 9/19 सेक्टर 9 विकास नगर जनपद लखनऊ से दिनांक 6 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। ईशान अहमद खान की आयु 33 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के 2:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लक्ष्मी जोशी और नवनीत जफा के गाए कुछ अवधी युगल लोकगीत। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस कहरवा के साथ।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज कलाकार हैं लक्ष्मी जोशी और नवनीता जफा। अब आइए सुनते हैं आपके स्वर में ये मेला गीत।

अभी आपने सुना लक्ष्मी जोशी और नवनीत जफा के स्वर में ये नक्ता। इसके साथ ही आज का लोकमाधुरी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी पहली सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपनी सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम संध्या 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी

0: मॉर्निंग समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी

आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर कार्यक्रम युवा तरंग में युवा श्रोता सुनेंगे अनुष्का रमन शुक्ला से सुभाष खन्ना की बातचीत। विषय होगा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर अर्चना सिन्हा, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ SGPGI लखनऊ से नीना सोनकर की भेंटवार्ता, गंभीर रोगियों के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे डॉक्टर नागेश्वर दुबे की वार्ता, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण दायित्व। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे शरद प्रकाश पांडे से कार्यक्रम खेती किसानी में आज शाम 6:50 पर। संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर शिरले जैन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश IT कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर शिवा राकेश का इंटरव्यू, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, ट्रांसेंडिंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगी डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा से की गई भेंटवार्ता, वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। भेंटकर्ता होंगे सुभाष खन्ना। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर सुनिएगा सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन। साबरी ब्रदर्स की गाय नात और कवाली आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर। पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनते हैं रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल सुबह 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत समात फरमाइएगा तकरीर उर्दू अदब में कौमी यकजहती की खायत। मुकर्रर होंगी तरन्नुम अखिल और कलामी शायर में सुनिएगा जनाब बाकर जैदी से उनका कलाम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगी। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से फसलों के सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। प्रकृति का उपहार स्टीविया इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। समय रहेगा प्रातः 7:00। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। विषय होगा सड़क पर सुरक्षित रहें। आज सुबह ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। सहजन उत्पादन इस विषय पर डॉक्टर विनय सिंह से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में कल दिन में 2:30 से। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। इस कार्यक्रम में मांडवी वर्मा से आप सुनेंगे युवाओं में ओवर थिंकिंग की बढ़ती समस्या। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आरती सिंह यादव से सुनिएगा परिस्थितिक संतुलन के लिए अभिनव अवसंरचना विकास क्यों और कैसे। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे आनंद सिंह से की गई भेंटवार्ता, एक जनपद एक उत्पाद और आत्मनिर्भर गांव। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। खरीफ में भूमि और बीज शोधन इस विषय पर डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी में शाम 6:50 पर। विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर सुनिएगा कैसे बनता और बरसता है मानसून। इस विषय पर डॉक्टर मनीष रनालकर निदेशक मौसम केंद्र लखनऊ से की गई प्रवीण कुमार की बातचीत। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगा सौरभ वर्मा का काव्य पाठ। डॉक्टर कल्पना एस बर्मन के गाय ब्रज लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोकरंग में कल सुबह 9:50 पर और कार्यक्रम लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर। अभी आप सुन रहे थे

हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में, जहां आज आपके साथ है एक नहीं बल्कि दो रेडियो साथी। मैं अनुष्ठा
1: और मैं हूं दिव्यांशु।
0: दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, साफ हवा हो, मौसम सुहाना हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी खुलकर अच्छी हवा मिले और वो खुलकर सांस ले सकें। लेकिन ये सब सिर्फ सोचने से नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें खुद भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी।
1: बहुत सही बात कही अनुष्ठा। दोस्तों, आज के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अगर यही युवा पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी समझ लें तो सच में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों,
0: बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं के योगदान पर, जिस पर हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे और बहुत सारी अच्छी चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी हो गया है। तनाव, अकेलापन और लगातार बढ़ता दबाव युवाओं की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास भेंटवार्ता, जिसका विषय है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। और विषय पर हमारे साथ जुड़ रही हैं एक युवा अनुष्का रमन शुक्ला, जिनसे बात की है सुभाष खन्ना ने। तो आइए सुनते हैं ये खास बातचीत।
1: युवा दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और विशेष इसलिए कि हम बहुत बार उस काम को नहीं जानते होते जो शायद, जैसे एक उम्र की बात हो कि भाई हम अगर प्रौढ़ावस्था में हैं तो शायद युवा अवस्था का वो मर्म हम नहीं समझते। वो वही व्यक्ति समझता है जो उस उम्र से गुजरता रहता है। हम अभी हाल ही के अखबारों में भी पढ़ रहे थे, हमने टीवी में भी देखा, कई ऐसे एग्जाम रहे जिसको कई बार ना कर पाने की स्थिति, या वो समझते हैं कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, या पेपर खराब होने के लिए। हमने कई बार ऐसी खबरें पढ़ी, कई बार ऐसी खबरें देखी जो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य के ठीक ना होने या उसकी तरफ बढ़ जाने या उसकी समस्याओं की तरफ बढ़ जाने की तरफ इंगित करती हैं या उस तरफ दर्शाती हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, क्या मानसिक स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं युवाओं में, और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है, या युवा कैसे गुजरता है उस फेज से। हम ये ढेर सारी जानकारियां एक युवा से ही लेंगे, क्योंकि वही उस बात को बहुत बेहतर तरीके से बता पाएगा। और ऐसी एक छात्रा आज हमारे साथ हैं, सुश्री अनुष्का रमण शुक्ला। आप इंजीनियरिंग कर रही हैं और युवा उम्र, जो आपने कहा कि भाई ढेर सारी मानसिक स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं जो गुजर रही है, उसके बारे में आप हमसे बेहतर चर्चा कर पाएंगी। सर्वप्रथम आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। और ये बात सच है कि आजकल मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि बचपन से हम लोग को सोसाइटी का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, या अब तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा करने का प्रेशर दिया जा रहा है। ये भले किसी से मिले या ना मिले, एक अपने ही अंदर बैठ जाता है, जिसकी वजह से खुद को डाउट करना या अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना कि नहीं, हमें बस मेहनत करके आगे करना है, हमारी खुशी को छीन लेता है। आजकल चार में से हर एक इंसान में देखी जा रही है।
1: आजकल जब हम युवाओं को देखते हैं, जैसा कि आफ्टर 12th हो गया या ग्रेजुएशन हो गया,

0: बहुत कुछ पाने की चाह है कि हम बहुत बड़ा मुकाम पाएं और शायद उसके अनुरूप हम मेहनत नहीं करते। क्या चलता रहता है युवाओं में, क्या ऐसी स्थिति होती है कि वो किस बात को लेकर तनाव में होते हैं?
1: इस बात को लेके कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, या जो हम कर रहे हैं क्या वो काफी है हमारे लिए, या क्या सोसाइटी इसको मान लेगी या वो हमसे और ज्यादा चाहती है।
0: एक स्टूडेंट के तौर पर आपके अंदर क्या चलता होता है जब इस तरह की पढ़ाई चल रही हो या दिक्कत हो, या जब आप कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, आपको कैसा तनाव होता है, किस तरह का तनाव होता है?
1: कि मैं जो कर रही हूँ वो एकदम सही होना चाहिए, चाहे मेरा रिजल्ट हो चाहे मेरे मार्क्स हो, वो एकदम सही आना चाहिए, क्या मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊं इस तनाव में आके, या जो भी चल रहा है चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी कंपटीशन हो वो एकदम सही जाए और बस सिलेक्शन हो ही जाए।
0: क्या कारण होते, जैसे हर समस्या का एक कारण होता है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो उसका कारण है कि इन इन वजहों से खराब हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या फैमिली प्रेशर होता है या आपका सोसाइटी प्रेशर है या आप खुद ही बिल्ड कर लेते हैं उस तरह का, या आपकी जो जीवनचर्या हो दैनिक दिनचर्या हो वो गड़बड़ होती है या आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, क्या लगता है आपको?
1: ये तो हर बच्चे पे भी डिपेंड करता है, पर जैसे एक सोसाइटी का प्रेशर तो रहता है या टीचर्स का कई बार रहता है, अगर आप अच्छे हो तो बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर आ जाता है कि नहीं आपको ये करना ही होगा और आप कर सकते हो, फिर बच्चों का दोस्तों का, और ये प्रेशर आपको खुद में भी एक आ ही जाता है जिसकी वजह आप खुद को ही इतना प्रेशराइज कर देते हो कि वो मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल में चला जाता है।
0: किस तरह का ऐसा उपक्रम के कौन सा ऐसी क्रियाकलाप करते हैं कि जिससे ये मेंटल प्रेशर दूर हो जाए या मेंटल प्रेशर आए ही ना, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे?
1: आए ना, ये तो बहुत ही स्टार्टिंग से आपको इस पे मेहनत करनी होती है, पर अगर आ रहा है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप बात करो, आप अपने परिवार पे बात करो, पर अगर नहीं हो रहा, क्योंकि काफी लोगों का होता है वो नहीं बात कर सकते क्योंकि उनको प्रेशर वहां से आ रहा है, पर अगर उनसे नहीं बात कर पा रहे तो आप दोस्तों से बात करो, क्योंकि किसी से भी बात करने से एक तो आप जब अपनी दिक्कत खुद बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, तो वो अपने आप आधी खत्म होने लगती है उसको बोलने से, उसके अलावा सामने वाला भी समझता है, फिर एडवाइस देता है, उस पर खुद बोलता है, तो एक पता चलता है कि नहीं कोई है साथ में हमारे।
0: जब हम अब बात कर रहे हैं अनुष्का की इसे दूर करने की, तो जो स्टेप हैं वो कौन कौन से लेते हैं छात्र, कैसे उसे दूर करने का प्रयास करते हैं?
1: पहले तो अपने आप को जानना चाहिए कि आपकी क्या क्षमता है, आप कितना कर सकते हैं, उसको जान के फिर उस हिसाब से अपने कार्य बांटें, और अगर एक चीज नहीं हो रही है तो उसके साथ साथ एक और जो उसमें आपको मजा आ रहा हो वो करें, ताकि आपका दिमाग दोनों तरफ रहे। उसके अलावा लोगों से बात करें
0: जी।
1: अगर परिवार में नहीं कर पा रहे, जैसे कई बार काफी लोगों में मैंने देखा है अपने ही दोस्तों में तो बहुत प्रेशर होता है, तो आप फिर उनसे ना बात करने की जगह दोस्तों से बात करें, क्योंकि बात करने से, खुद बोलने से कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, आधी वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर उनकी एडवाइस मिलना, उनसे बातचीत होना, एक आपके दिमाग में स्ट्रेस रिवील करता है।
0: यदि मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, आपको लगा कि थोड़ी बढ़ गई है, तो क्या आप लोग किसी बड़े से, किसी अभिभावक से भी सलाह लेते हैं या उनको अपनी समस्या बताते हैं?
1: हाँ, ये बहुत ही स्टिग्मा है कि नहीं जाना चाहिए, दिमागी बीमारी बहुत ज्यादा इसको बोला जाता है, पर ऐसे हालातों में सबसे अच्छा होता है काउंसलर्स के पास जाना एंड उनसे एडवाइस लेना, क्योंकि वो आपके लिए क्या सही है उसके बारे में बताते हैं, तो ये सोचना कि क्यों जाएं और क्यों नहीं जाएं, इससे ज्यादा अच्छा होता है कि जाके बात करें और अपने आप को सही रखें। और ये है कि आजकल बच्चे जा रहे हैं, मेरे दोस्त, मैं, कोई भी हो है, तो हम लोग इस पे खुद बात करते हैं और फिर लोगों को भी बोलते हैं कि जाना चाहिए, किसी को भी आप एडवाइस दे सकते हैं।
0: मतलब सर्वप्रथम कि आप खुलकर बात करते हैं, अपनी समस्या दूसरों को बताते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो अभिभावक को, और जैसा आपने कहा भी कि आप चिकित्सीय मदद लेती हैं, और कहीं भी ये किसी तरह का कोई स्टिग्मा नहीं है कि आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप ना बताएं, या आपको लगता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य कोई बुरी बात है। हमारे श्रोताओं को, विशेष करके जो आपकी उम्र के हैं और कई बार बड़ी उधेड़ बुन में होते हैं कि हम कोई दिक्कत में हैं या हम समस्या में हैं, हमारे करियर संबंधी, हमारे सोशल लाइफ संबंधी, या हमारा व्यक्तिगत कुछ कहीं ऐसा हो रहा हो, हम कई बार जो अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, अपनी बातें नहीं बताते हैं, माता पिता को नहीं बताते, दोस्तों को नहीं बताते, खुद में ही कुड़ते रहते हैं, जो आपके युवा दोस्त हैं उन्हें क्या संदेश देंगे?
1: ये एक जिंदगी का ही पार्ट है, इससे मैं भी गुजरी हूँ, इससे सब गुजर ही रहे हैं, पर इससे डील करने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप किसी की मदद लें, क्योंकि वो कब इतनी बढ़ जाए कि फिर खुद से ही ना हो, उस पे अगर आप पहुंचते हैं तो फिर गलत कदम ही उठाए जाते हैं
0: जी।
1: एंड

0: आजकल ये नहीं कोई चाहता कि कोई भी बच्चा ऐसे उठा जैसे अभी हो रहा है, तो उस प्रेशर को खुद झेलने से अच्छा है आप या तो कहीं लिख लें और लिखने के बाद इतनी हिम्मत करें कि आप अपने घर वालों को या दोस्तों को बता सकें। इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम सिर्फ हमारी आइडेंटिटी नहीं है,
1: जी
0: सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को सब कुछ मान लेना, बचपन से लेके अब तक 18-20 साल तक हम एग्ज़ाम ही देते हैं,
1: जी
0: इसको सिर्फ आइडेंटिटी मान लेना सही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आगे जाके अभी भी बहुत चीज़ें हो रही होती हैं। इस एग्ज़ाम के चलते हमारे सामने क्या अच्छा हो रहा है हम यही भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी
1: जी
0: कि मुझे भी समझने में टाइम लगा, सबको लगता ही है टाइम, पर इसको हमेशा याद रखना है कि एग्जाम सिर्फ हमारी जिंदगी का पार्ट नहीं है, हमें और भी चीजें हमारे आसपास, चाहे वो नेचर हो, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, एंड हमें उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और इस पे इतना नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एग्जाम में हम कितना अच्छा कर रहे हैं।
1: तो दोस्तों आपने सुना ही, और अनुष्का जो बता ही रही हैं, जो कि वो उसी उम्र में हैं और वो सारी फेज वो पार कर रही हैं, पार करते हुए आ रही हैं और उससे दो चार हो रही हैं। हम सभी को भी ये समझना है कि एग्जाम केवल और केवल एक परीक्षण है और केवल उस विषय का परीक्षण है। कदापि ये ना समझे कि ये हमारा जीवन है और ये जीवन का आखिरी एग्जाम है। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहें। असफलता जीवन की केवल एकमात्र यूनिट है, अगले में फिर आपको सफलता मिलेगी, फिर पूरा जीवन सफलताओं असफलताओं का एक मिश्रण है। इसलिए कदापि कभी ये ना समझें कि ये दिक्कत है और इसे कभी भी अपने मेंटल स्ट्रेस की तरफ ना ले जाएं, या जो मानसिक दिक्कत है या मानसिक अवसाद है उसे ना ये समझें या उसके तरफ इसे ना ले जाएं, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। आप हमेशा खुश रहें, कोई हॉबीज पाल लें, अपने करियर गोल सेट करें, उसके अनुरूप पढ़ाई करते रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य के साथ साथ अपने फिजिकल स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। खुश रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, संवाद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी कि आप अपने दोस्तों को ये संदर्भित कर रही थी, उन्हें बता रही थी, उन्हें एड्रेस कर रही थी, और जो आपकी समस्या है, जो आपके दोस्तों की समस्या है, उसे आप बता रही थी, उसे दो चार हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और अपनी उम्र की जो समस्याएं हैं उस पर इतनी गहन चर्चा की। धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनुष्का रमन शुक्ला और जिनसे बात की थी सुभाष खन्ना ने। चलिए दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर, और फिर मिलते हैं और करते हैं आपसे ढेर सारी और बातें।

0: दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी से भी जुड़ा सवाल है। विषय है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं का योगदान।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी अचानक तेज बारिश, तो कभी प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों।
0: और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बदलाव कौन लाएगा? तो जवाब है कि हम युवा। युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं होते बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत भी होते हैं। छोटी छोटी आदतों से भी पर्यावरण को बचाने में बड़ा योगदान हम दे सकते हैं।
1: सही बात है दोस्तों, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पानी और बिजली बचाना, पेड़ लगाना और अपने आसपास सफाई रखना। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेले मेरे करने से क्या हो जाएगा, लेकिन सच कहिए तो हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है दोस्तों।
0: बिल्कुल सही। और आज का युवा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर वही सोशल मीडिया सिर्फ ट्रेंड्स और रील्स तक सीमित ना रहकर जागरूकता फैलाने का जरिया बन जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है।
1: बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी पोस्ट, एक जागरूक वीडियो या किसी सफाई अभियान की तस्वीर कई लोगों को इंस्पायर कर सकती है। कॉलेजों और स्कूलों में भी आज कई युवा मिलकर पर्यावरण से जुड़े अभियान चला रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। कोई तो साइकिल चलाने को बढ़ावा दे रहा है, कोई कपड़े के बैग इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, तो कई लोग पेड़ लगाने के लिए भी एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि अब युवा सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि खुद आगे आकर उदाहरण भी बन रहे हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है। ये हमारी हवा, हमारा पानी और हमारी धरती, इन सब से जुड़ा हुआ है।
0: अगर आज हमने इसे संभाल लिया तो आने वाली पीढ़ियों को भी हम एक बेहतर दुनिया दे पाएंगे। तो आइए एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हम अपने आसपास सफाई रखेंगे और प्रकृति का सम्मान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि दोस्तों बदलाव की शुरुआत कहीं और कहीं यहीं से होती है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं एक गीत की तरफ।

0: तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम की, क्योंकि गर्मी का ही मौसम है और गर्मी कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गर्मी का तापमान काफ़ी बढ़ गया है। तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है और दोपहर में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सिर्फ मौसम की शिकायत ना करें बल्कि समझदारी से उसका सामना करें।
1: जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये जानें कि गर्मी से कौन कौन सी समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो हीट स्ट्रोक जैसे कि लू लग सकती है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी भी हो सकती है, थकावट, चक्कर आना, बेहोशी हो सकती है, त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे कि घमौरी और भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, इन सब की समस्या भी हमें हो सकती है।
0: लेकिन गर्मी से बचने के कुछ आसान और असरदार तरीके भी हैं, जैसे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, दोपहर 12 से 4 के बीच धूप में जाने से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहने, खुली धूप में ज़्यादा देर ना रुकें, खान पान पर ध्यान दें, पेट खाली ना रखें, घर में रहें तब भी सावधानी ज़रूर रखें दोस्तों, पंखा कूलर या एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करें और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, पानी पीते रहिए।
1: जी हाँ दोस्तों, गर्मी तो मौसम की सच्चाई है, मौसम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अगर हम इस बदलते मौसम में सजग रहेंगे तो इससे बचा भी जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा ख्याल और हम गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं और एक सुरक्षित तरीके से इसे पार भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में सुनते हैं अब ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, तो फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग। दीजिए अपनी दोस्त अनुष्ठा और
1: दिव्यांशी को इजाजत।
0: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान, जिसे लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त आशीष सोनी। दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा, पेड़ों की हरियाली, बारिश की खुशबू, पक्षियों की आवाज़, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगें तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। दरअसल प्रकृति का यही संतुलन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, जंगल और पर्यावरण मिलकर बनाते हैं जैव विविधता। हर वर्ष 22 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाती है, ताकि हम प्रकृति की अहमियत को समझ सकें और उसे बचाने के लिए आगे आएं। तो आइए, आज नई उड़ान में हम इस विषय पर बात करेंगे। जैव विविधता आखिर है क्या, यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ी है और हम इसे बचाने में क्या योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, जैव विविधता का अर्थ है धरती पर मौजूद सभी जीवों और वनस्पतियों की विविधता, यानी खेतों की फसल, बगीचे के फूल, जंगल के पेड़, नदियों की मछलियाँ, आसमान में उड़ते पक्षी और यहाँ तक कि मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीव भी जैव विविधता का हिस्सा हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रकृति केवल सुंदरता के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। हम जो खाना खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जो पानी पीते हैं, सब कुछ प्रकृति से मिलता है। अगर पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा, अगर नदियां दूषित होंगी तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। यानी प्रकृति का हर जीव किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ा है। दोस्तों, जैव विविधता केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, यह हमारे घर और जीवन में भी मौजूद है। सुबह की चाय में जो अदरक और इलायची है, रसोई में रखी हल्दी, आंगन की तुलसी, ये सब प्रकृति की देन है। गांवों में पेड़ गर्मी कम करते हैं, तालाब भूजल स्तर बनाए रखते हैं, पक्षी खेतों में हानिकारक कीड़ों को कम करते हैं। यानी प्रकृति बिना किसी शुल्क के हमें सेवाएं देती रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आधुनिक जीवन शैली में हम प्रकृति से कितने दूर होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई, पानी की बर्बादी और प्रदूषण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। आज शहरों में गौरैया कम दिखाई देती हैं, गर्मी पहले से अधिक महसूस होती है, बरसात का समय पर भी ना होना, ये सब संकेत हैं कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैव विविधता का तेजी से खत्म होना। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें जंगलों की कटाई, उद्योगों से फैलता प्रदूषण, प्लास्टिक, कचरा, वाहनों का धुआं, बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन। जब जंगल काटे जाते हैं तो जानवरों का घर छिन जाता है, जब नदियां प्रदूषित होती हैं तो जल जीव मरने लगते हैं, जब हवा प्रदूषित होती है तो इंसानों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का असर अब हमारे जीवन में साफ दिखाई देने लगा है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी असमय बारिश, तो कभी अत्यधिक गर्मी, ये केवल मौसम की घटनाएं नहीं बल्कि प्रकृति के असंतुलन के संकेत हैं। बड़े बड़े अभियान ही ज़रूरी नहीं है इसके लिए, हमें अपनी छोटी छोटी आदतों में भी बदलाव ला करके इसमें सुधार किया जा सकता है। हर वर्ष कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, पानी की बर्बादी रोकें, घर की छत या बालकनी में पौधे लगाएं, पक्षियों के लिए दाना और पानी

रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, ये सारी चीज़ें हम अगर करते हैं तो निश्चित ही जो है जैव विविधता और इसके संतुलन में हम अपना सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं। बातों का सिलसिला हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए सुनते हैं इसी विषय को जोड़ता हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, गर्मी बहुत अधिक हो रही है, जिसमें हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही खान पान का भी। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जिसका विषय है गंभीर रोगियों के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक। डॉक्टर अर्चना सिन्हा, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, जिनसे बातचीत की है नीना सोनकर ने।
1: श्रोताओं, आज आकाशवाणी के VIP स्टूडियो में मैं हूं नीना सोनकर।

0: और आज हमारे साथ हैं एसजीपीजीआई लखनऊ की वरिष्ठ डाइटिशियन डॉक्टर अर्चना सिन्हा जी। डॉक्टर अर्चना सिन्हा जी का बहुत बड़े स्तर पर शोध है उन मरीजों के लिए जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, गुर्दे के रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें मधुमेह है या फिर जिन्हें कैंसर है या फिर ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बीमारी जिसका वो आहार चार्ट बनाती हैं। यानी कि जब डॉक्टर्स उन रोगियों का इलाज करते हैं तो अर्चना जी उनके पास बैठकर ऐसे ही रोगियों का इलाज करती हैं, यानी कि आहार के माध्यम से, क्योंकि आहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी रोगी के स्वस्थ रहने के लिए और आम आदमी के लिए भी। तो आज हम स्टूडियो में अर्चना जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर अर्चना जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अर्चना जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो मेरा सवाल है वो ये है कि एक संतुलित आहार किसे कहेंगे। मान लीजिए किसी भी इंसान को कोई बीमारी नहीं है, वैसे तो अमूमन हर इंसान को कुछ ना कुछ होता है, वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन साधारणतया एक आम आदमी कैसे जाने कि आहार के मायने होते क्या हैं और आहार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है बीमारियों से बचे रहने के लिए।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा आहार लेना है कि स्वस्थ है और किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित ना हो। तो एक संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको कई बार हम अनदेखी करते हैं, जैसे कई तरह के विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, कई तरह के हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि प्रचुर मात्रा में हमारे आहारीय रेस है जिसे हम डाइट्री फाइबर कहते हैं और पानी होना चाहिए। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व और प्रमुख पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा, एक संतुलित मात्रा और उचित अनुपात में यदि हमारे भोजन में शामिल होते हैं तो हम न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि दीर्घकालीन में हम किसी भी तरह के रोग हैं, जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दा रोग है, इनसे बच सकते हैं। तो संतुलित आहार लेने के लिए जरूरी है कि सभी प्रकार के जो मुख्य भोजन समूह है, जैसे अनाज है, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, दालें हैं, दलहन है, फलियां हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ हैं, इन चीजों को और जो अच्छे प्रकार के जो वसा है उनको एक उचित मात्रा में यदि अपने हम आहार में सम्मिलित करते हैं तो हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं।
0: अर्चना जी, आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा आहार तभी स्वस्थ रहेगा, यानी कि जो हम खा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम खा क्या रहे हैं। ऐसी चीज तो नहीं खा रहे हैं कि भरने को तो हम पेट भर रहे हैं लेकिन उसका कुछ और ही दुष्परिणाम हो रहा है। अब ये बताइए, जब आपने आहार के मायने बता दिए कि आहार के बहुत मायने होते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, वो डॉक्टर्स की सलाह पर चल रहा है, तो उसका किस तरह का आहार होना चाहिए? क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान को अगर ब्लड प्रेशर है तो शुगर भी होगी और अगर शुगर है तो फिर कहीं थायराइड हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता चला जाता है, जो बॉडी के अंदर नेटवर्किंग होती है, कैसे समझाएंगे आप कि क्या खाए?
1: बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप है ये एक वैश्विक बीमारी हो चुकी है। पहले हम देखते थे कि बड़े उम्र के लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत मिलती थी, लेकिन आज कुछ समय जिस तरह से हमारी आधुनिक जीवन शैली हो रही है, अनियमित जो जीवन शैली है, असंतुलित आहार का हम सेवन कर रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति या फास्ट फूड कल्चर की ओर से जो हमारी युवा पीढ़ी तेजी से उनके पीछे भाग रही है, इसके कारण से ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। परंतु फॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि यदि हम अपने आहार को अच्छा कर लेते हैं तो इसको हम नियंत्रण में रख सकते हैं। तो जो एक अच्छा आहार होता है वो ब्लड प्रेशर के बचाव, रोकथाम और प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अपना वजन, जो हमारा हाइट के अनुसार जो वजन होना चाहिए, आदर्श वजन बनाना है, परंतु यदि वजन ठीक से रखना तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में फाइबर यानी आहारीय रेशे का को सम्मिलित करें, मतलब अच्छे रूप में हमें जो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, चोकर वाला आटा है, छिलके वाली दालें हैं, विभिन्न प्रकार के जो मिलेट्स होते हैं यानी जो मोटा अनाज है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मड़ुआ जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इनको सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ नमक एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है कि जो नमक का सेवन है 5 ग्राम यानी एक छोटा चाय का चम्मच, उंगली से बराबर किया हुआ छोटा चाय का चम्मच यानी 5 ग्राम से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। अब नमक हमने कम कर लिया लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ बहुत सारी है, तो हमने नमक देख रहा है जो हम टेबल सॉल्ट ले रहे हैं नमक के रूप में, परंतु बहुत सारी ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें

0: यानी छुपा हुआ सोडियम होता है, तो उसको कम करना बहुत ही आवश्यक है। यानी अचार है, पापड़ है, चटनी है, नमकीन बिस्किट है, दाल मोठ है, फास्ट फूड्स है, इनका जो सेवन ना करें तो बेहतर है। यदि कर भी रहे तो नियंत्रित मात्रा में हमको पूरे दिन में इनको सम्मिलित करना है। भली प्रकार की वसा जैसे डालडा है, देशी घी, इन चीजों का इस्तेमाल ना करके हम कम मात्रा में तेलों का प्रयोग करें, और हम किसी ना किसी रूप में कोशिश करना है कि व्यायाम करना है, तो हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकते हैं और अपने चिकित्सक के कहे अनुसार हमें दवाओं का सेवन भी अच्छी तरीके से करना है और समय समय पे ब्लड प्रेशर की जांच करानी है।
1: जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक ये बताया कि किस तरह से हमें अपनी जीवन शैली को सही करना है। खाने पीने में आपने बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि आजकल लाइट सोडियम, हाई सोडियम, सेंधा नमक और जाने कितने नमक के प्रकार हमारे सामने हैं, और बाजार है कि मानता नहीं, बाजार हम ही को बेचेगा कि भाई ये वाला नमक बहुत अच्छा है, इसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो नमक के बारे में आपने बताया कि नॉर्मल नमक हमें खाना है।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार ओपीडी में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी को है तो थोड़ा ले रहे हैं तो चलेगा, पर मैं ये कहना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि लोग कई प्रकार के जो आजकल उपलब्ध है नमक, जिन्हें हम लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट कहते हैं, जैसे अभी नीना जी ने बताया सेंधा नमक है, गुलाबी नमक है, काला नमक है, और कई प्रकार के नमक बाजार में उपलब्ध है। तो यदि हम देखते हैं जो हमारा साधारण आयोडाइज नमक होता है 5 ग्राम, यानी छोटा चाय के चम्मच से कम लेना, पर कई बार प्रायः देखा जाता है कि कई सारे मरीज आते हैं, स्पेशली जो गुर्दा रोग के मरीज हैं जिनमें पोटेशियम की भी समस्या होती है, वो जब हमारे पास पेशेंट आ रहा है पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ और हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहला प्रश्न होता है भाई आप नमक कौन सा खा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम सेंधा नमक, काला नमक, गुलाबी नमक या लो सोडियम नमक खा रहे हैं। तो लगभग हर तरह के नमक में सोडियम की मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे होती है, परंतु उसका जो सॉल्ट का टेस्ट होता है वो पूरा नहीं मिलता, उसके चक्कर में हम सेंधा, काला या अन्य लो सोडियम सॉल्ट को ज्यादा मात्रा में खाते हैं। तो ज्यादा मात्रा में खाने का परिणाम क्या होता है, अल्टीमेटली जो हम डेली सॉल्ट के थ्रू जो सोडियम नामक चीज जा रही है वो ज्यादा हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि साधारण आयोडाइज नमक को ही संतुलित मात्रा में पूरे दिन में प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर तरीका है वो।
1: अर्चना जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि बहुत सारे नमक तो हम लोग लेके आते ही हैं बाजार से, कि सलाद के लिए काला नमक, चाट के लिए काला नमक,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और खाने के लिए गुलाबी नमक, फिर एक लाहौरी नमक जो व्रत के लिए,
0: हाँ,
1: और साधारण नमक।
0: पत्थर वाले नमक जो होते हैं, समस्या
1: जी
0: क्या होती है, इसमें सोडियम को हटा के पोटेशियम डाल दिया जाता है, और जब गुर्दा रोग से व्यक्ति पीड़ित होता है तो इस पोटेशियम को निकाल नहीं पाता है, जिसके कारण से हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि नुकसानदायक हो सकता है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब हम वसा पर बात करेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। वैसे आजकल लोग फिटनेस फ्रीक हैं और सोचते हैं कि हमें बिल्कुल सही रहना है, लेकिन जब वसा की बात आती है तो मन तो करता है कि थोड़ा तैलीय खाना स्वादिष्ट लगता है, लेकिन तेल आखिर जा कहाँ रहा है? वो किसी गाड़ी में नहीं, हमारे शरीर में जा रहा है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: समझना होगा। और थोड़ा स्वाद कम सही, लेकिन हमारे हृदय को सही से काम करना चाहिए। तो वसा के बारे में आप क्या बताएंगी, किस तरह की वसा हो? सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, या फिर विभिन्न प्रकार के तेल जो आज बाजार में उपलब्ध हैं, क्या कहेंगी?
0: हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोगों को हमेशा लगता है तेल कितनी मात्रा में खाएं, ये तो हमने बात की कि कम खाना, नियंत्रित मात्रा में खाना, लेकिन क्या खाएं, मतलब जो वसा का प्रकार है और कितनी मात्रा में, ये दोनों चीजें ही मिलके हमारे हृदय को स्वस्थ बनाती हैं।
1: जी
0: देखिए, हमारा मूल मंत्र होना चाहिए स्वाद भी सेहत भी। तो कम तेल, यानी अगर हम सबसे पहले ये याद रख लें कि प्रति व्यक्ति 400 से 500 ml तेल प्रति माह, यानी लगभग 10 से 15 ml, या एट द मोस्ट हम मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 ml तक तेल का पूरे दिन में प्रयोग कर सकते हैं। और अब ये जानना जरूरी कि किस तरह का तेल, तो जो सैचुरेटेड फैट या संतृप्त वसा होती है, यानी डालडा है, वनस्पति है, देशी घी है, या मलाई है, या जो फास्ट फूड जो हम बाजार से बेकरी के पदार्थ या बर्गर पिज्जा खाते हैं उनमें जो फैट पाया जाता है, वो हमारे खराब तरह के कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको बढ़ाता है, जो कि हमारे हृदय के लिए घातक होता है, तो इनका प्रयोग ना करना बेहतर है, या बहुत कम मात्रा में अपने चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह पर कर सकते हैं। और जो असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट है, जो विभिन्न प्रकार के तेल जो रूम टेम्परेचर पे मतलब तरल के रूप में होते हैं, जैसे आपने बात की सरसों तेल है, या राइस ब्रन ऑयल है, या सफोला है, या मूंगफली का तेल, तिल का तेल, बदल बदल के करना है। परंतु यदि हम भारतीय परिवेश की बात करते हैं तो हमारे लिए सरसों का तेल जो होता है बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें भली प्रकार के जो वसा होते हैं, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, जो कि हमारे अच्छे तरह के कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखते हैं, तो कम मात्रा में लेंगे। और ट्रांस फैट जो बार बार अगर हम तेलों को गर्म करके फिर से इस्तेमाल करें,

0: उनसे बचना है, क्योंकि वो हृदय के लिए सबसे ज्यादा घातक हैं। तो कम मात्रा में और सही प्रकार का वसा का चुनाव करते हैं तो हम अपने हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं।
1: अर्चना जी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो फिल्टर ऑयल, डबल फिल्टर, सिंगल फिल्टर और तरह तरह के जो तेल हैं, इनमें हम भ्रमित ना हो, और जो
0: बिल्कुल
1: हमारे लिए सही है, सरसों का तेल मुफीद माना जाता है, कितना खाना है ये भी हमें समझना होगा। मुफीद का मतलब ये नहीं कि काफी सारा हम खा रहे हैं तो हम सेफ हैं। अब हम बात करेंगे पानी की। पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब बात गुर्दा के रोगी की होती है, ऐसे व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए? उसको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा पानी पिएंगे तो दिक्कत आ सकती है, कम पिएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो किस तरह से आप पानी के बारे में समझाएंगी?
0: गुर्दा रोग में क्या, तो जब हमारे गुर्दे ठीक तरह से काम कर रहे होते हैं तो शरीर से अतिरिक्त द्रव्य को शरीर से हमारे यूरिन के रूप में मूत्र के द्वारा निकाल देते हैं। परंतु जब वो स्थिति आती है, यानी हमारे गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अतिरिक्त यूरिन का बनना कम, या कई बार कोई ऐसी स्थिति आती है, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो गुर्दा रोग के अंतिम अवस्था, जिसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज करते हैं, उससे ग्रसित होते हैं, तो यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है। तो कोशिश करनी है, ऐसे तो थंब रूल की यदि बात करें कि, तो हम कहते हैं कि जितना प्रीवियस डे, एक दिन पहले जितना यूरिन हुआ है 24 घंटे में, उससे 300, 400 या एट द मोस्ट 500 ml तक एक्स्ट्रा पानी ले सकते हैं। परंतु ये अलग अलग तरह से हम डिफाइन करते हैं, डिपेंड करता है कि 24 घंटे में उन्हें यूरिन कितना हो रहा है, शरीर में कोई सूजन तो नहीं है, और गुर्दा रोग की किस अवस्था में है, पेशेंट डायलिसिस पे है या नहीं है। आप बहुत गर्म स्थान में रह रहे हैं जहाँ पसीना भी बहुत निकल रहा है, तो आपको ये देखना है कि 24 घंटे में जितना यूरिन हो रहा है उतना टोटल तरल लेना है। तो तरल से मतलब सिर्फ पानी से नहीं है, दूध, चाय, पानी, दाल का पानी, टोटल लिक्विड जितना ले रहे हैं आपका यूरिन के साथ मैच होना चाहिए। बहुत गर्म है, पेशेंट ड्राई है, बिल्कुल सूजन नहीं है, तो 400-500 ml एक्स्ट्रा तरल ले सकता है। यदि बहुत सूजन है तो उसके अनुसार अपने चिकित्सक की सलाह पे पानी की जो मात्रा होती है वो तय करना है। आप देख सकते हैं सांस नहीं फूल रही है, सूजन नहीं है, तो हम अगर 1.5 लीटर किसी को यूरिन हो रही तो 2.25 लीटर तक लगभग लगभग टोटल तरल ले सकते हैं। इसलिए समय समय पे 24 घंटे का यूरिन की जांच करना भी आवश्यक है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जो गुर्दा रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसको टोटल तरल दिन भर में कितना देना है। इसलिए आपको डॉक्टर से मिलते रहना और फॉलोअप करना बहुत आवश्यक है।
1: अर्चना जी, अब कुछ रासायनिक तत्वों की बात हम करते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है और प्रोटीन, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे तो ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन किस तरह से इसे कोई भी व्यक्ति जो गुर्दे के रोग से पीड़ित है, जिसका इलाज चल रहा है, डायलिसिस हो रही है, ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी?
0: अभी क्या है कि जब शुरुआत में जब गुर्दा रोग से ग्रसित मरीज आते हैं, जब पहली बार हमारे पास पहुंचते हैं, तो उन्होंने ये सुना होता है कि प्रोटीन नहीं लेना है, उसके चक्कर में वो दूध तो लेता नहीं, दाल तो लेता नहीं, ऐसी बातें करते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। गुर्दा रोग और प्रोटीन के बहुत सारे मिथक हैं, तो ये जानना जरूरी कि प्रोटीन बंद नहीं करना होता है, हमें प्रोटीन की जो मात्रा है और जो उसका प्रकार है उसको हमें सही तरीके से लेना है। यदि हम बहुत प्रोटीन दे रहे हैं तो गुर्दे पे जो है बहुत भार पड़ता है, यूरिया बढ़ने लगता है और गुर्दा रोग की जो बीमारी की गति वो बढ़ सकती है। और बहुत कम प्रोटीन लेने की स्थिति में क्या होता है कि मांस पे ऊर्जा नहीं मिलती है, तो हमारे शरीर को जब तो प्रोटीन की कमी हो सकती है, मसल्स जो होती है हमारी, मांसपेशियां होती है, वो कम होने लगती है और कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तो लगभग 0.6 ग्राम से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आदर्श वजन यदि 50 किलो है तो हम 40 ग्राम तक प्रोटीन आराम से दे सकते हैं, मतलब जितना आदर्श वजन है उससे 0.7 to 0.8 ग्राम से। तो उसके लिए लगभग एक कटोरी दाल है, 250 से 300 ml जो कम वसा वाले दूध है, अगर यदि आपका मरीज अंडा खाता है तो 1 से 2 अंडे की सफेदी, एक कटोरी दाल आराम से हम इन्हें दे सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम की। हाँ, पोटेशियम किडनी के लिए, हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज लवण है
1: जी।
0: जिनको निकालने का काम हमारे गुर्दे करते हैं जब वो इष्टतम रूप से यानी एकदम ऑप्टिमल लेवल तक काम कर रहे होते। परंतु जब किसी भी प्रकार की गुर्दा रोग के स्थिति से व्यक्ति गुजरता है तो शरीर में पोटेशियम बढ़ सकता है, तो हमें पोटेशियम की मात्रा नियंत्रित करनी होती है। तो वो चीजें जो पोटेशियम बहुत अधिक बढ़ाती हैं, जैसे किसी भी फल का रस है, सब्जी का सूप है, और जो नारियल पानी है, लोग बीमार पड़ते हैं तो बहुत नारियल पानी पीते हैं, लेकिन नारियल पानी में पोटेशियम अतिरिक्त मात्रा में पाया जाता है। और जो हमने अभी बात की कि गुर्दा रोग के व्यक्ति को कोई भी सॉल्ट सब्स्टिट्यूट यानी लोना नमक, सेंधा नमक, काला नमक, गुलाबी नमक, ऐसे किसी भी प्रकार का नमक का सेवन नहीं करना है। कुछ एक दवाइयां चलती रहती हैं, वो भी पोटेशियम ज्यादा बढ़ाती हैं, तो जब भी पोटेशियम बढ़े

0: तो आप डायटिशियन से अपनी डाइट को अवलोकन कराइए कि हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे, और अपने चिकित्सक से मिलकर ये भी देख लें कि कोई ऐसी तरह की दवा तो नहीं चल रही जिसकी वजह से पोटेशियम बढ़ रहा है। कई बार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत पुराना कब्ज है या बहुत शुगर बढ़ा हुआ है, उससे भी पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। तो इन चीजों को समय समय पर, गुर्दा रोगी एक बार नहीं, आपको हर बार फॉलोअप में जब भी आप पुनः परीक्षण के लिए आ रहे हैं डायटिशियन से मिलना है, तो ये ध्यान रखेंगे। परंतु ऐसा नहीं कि कोई सब्जी या फल नहीं खा सकते। जो लो पोटेशियम फ्रूट्स हैं, फल हैं, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती या पपीता, आप 100 ग्राम से नीचे तक ले सकते हैं। यदि आपका पोटेशियम सामान्य स्तर पे 5 के नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कई जो लो पोटेशियम सब्जियां हैं, जैसे लौकी, कद्दू, तोरी, टिंडा, चचिड़ा, इस तरह की सब्जियों को भी आप सेवन आराम से कर सकते हैं। अब सेकेंड जो इम्पोर्टेंट खनिज लवण होता है वो होता है फॉस्फोरस, क्योंकि किडनी को फॉस्फोरस निकालने का काम भी किडनी करती है। कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, यानी जो गुर्दा की अंतिम अवस्था, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है, वहां पे डायलिसिस करनी पड़ती है। लेकिन डायलिसिस के द्वारा भी फॉस्फोरस उतने कायदे से नहीं निकलता है। तो कुछ एक फॉस्फोरस जो हमारे खाने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या जितने भी हमारे प्रोसेस फूड्स होते हैं ना, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, या जितने तरह की डिब्बाबंद चीजें, उनमें जो फूड एडिटिव्स, उनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ज्यादा समय तक हम उन्हें सुरक्षित रख सकें, उसलिए फॉस्फोरस और पोटेशियम पे आधारित कई सारे उसमें रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फॉस्फोरस बेस्ड या पोटेशियम बेस्ड एडिटिव्स कहते हैं। उनका अवशोषण 100% होता है। तो कोशिश करना कि घर की बनी चीजों को इस्तेमाल करें रेदर देन जो एडिटिव्स हो रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप पैकेट वाली कोई सामान खरीदते हैं अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त पीछे देखें कि कितनी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम या फॉस्फोरस उसमें उपलब्ध है। तो बाकी जो चीजें हैं, कम मात्रा में दूध, दही, मट्ठा, पनीर, दूध में हालांकि फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, परंतु यदि हम नॉर्मल गाय या भैंस का दूध वसा हटा के इस्तेमाल करें तो ठीक है। आप जो प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि फ्लेवर्ड मिल्क खरीद रहे हैं या चीज है, ये सब चीजों का फॉस्फोरस जल्दी उपलब्ध होता है, तो इनका सेवन कम से कम करना है। अब आती है बात सोडियम की। अब सोडियम या नमक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके अलावा सोडियम जितने भी डिब्बाबंद चीजें हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, उनसे बचना है। और पैकेट फूड के पीछे आप देखें कि उसमें लिखा रहता है कितनी पर सर्विंग में, एक जो मात्रा आप खा रहे हैं 100 ग्राम में कितना कैलोरीज है, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा सोडियम भी लिखा रहता है। तो आपने देखना है, अगर 400 mg से ज्यादा सोडियम, तो 400 mg सोडियम इसी पैकेट में तो लगभग 1 ग्राम नमक के बराबर हो गया। तो यदि हमें पूरे दिन में 5 ग्राम ही नमक लेना है तो ये सबसे अतिरिक्त नमक जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो रोगी शिक्षा भी बहुत आवश्यक है कि हम अपने जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम सिखाते हैं कि कैसे फूड लेवल्स पढ़ना है, कैसे उनको उसकी जरूरत को समझना है, क्या पोटेशियम या फॉस्फोरस कैसे हैं जो ज्यादा अवशोषित होते हैं। जैसे हमने बताया जितने भी प्रोसेस फूड्स या कोल्ड ड्रिंक में जो फॉस्फोरस पाया जाता है या पोटेशियम बेस्ड जो एडिटिव्स होते हैं उनमें जल्दी उपलब्ध होता है, इन चीजों को सेवन से बचना है। तो यदि अगर हम जो आहार योजना बना रहे हैं बहुत समझदारी बुद्धिमत्ता के साथ, मरीजों की पसंद नापसंद की चीजों को पूछ कर, अगर हम आहार में भली प्रकार से लो सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस वाले जो खाद्यान्न है उन्हें सम्मिलित करेंगे, तो हम कुपोषण से भी मरीज को बचा सकते हैं और गुर्दा रोग की जो गति है उसको धीमा रख सकते हैं, ताकि मरीज की जो जीवन की गुणवत्ता है वो भी बना रहे, स्वाद भी बना रहे भोजन का।
1: अर्चना जी, बहुत विस्तार पूर्वक आपने हमारे श्रोताओं को अपनी बात बताई। कोई भी ऐसा मरीज जो इन समस्याओं से पीड़ित है जिसके बारे में आज हमने प्रोग्राम किया, वो जरूर इस बात का ध्यान रखे कि जहाँ भी दिखा रहा है वहाँ जो आहार तालिका है वो जरूर अपने डाइटिशियन से बनवा लें, ताकि वो भविष्य में सुरक्षित रह सके, उसका शरीर ठीक रहे। क्योंकि दवाओं के बाद नंबर अगर किसी चीज का आता है तो भोजन का ही आता है। तो भोजन और दवाएं विशेषज्ञ की सलाह से लें और तभी आप सुरक्षित और सही रह सकते हैं। डॉक्टर अर्चना सिन्हा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने बहुत विस्तार पूर्वक सारी बातें श्रोताओं को बताई कि किस तरह से जो इस तरह की समस्याएं होती हैं, हृदय से संबंधित, हाइपरटेंशन से संबंधित, किडनी से संबंधित जिसे हम गुर्दा कहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर जिसकी अभी मैंने बात कर ही ली है, कि कौन सा भोजन खाना है, किस तरह से खाना है। आपने एक शिक्षा शब्द का भी इस्तेमाल किया कि किस तरह से जो लिफाफे होते हैं या जिसमें पॉलिथीन में कोई भी चिप्स वगैरह पड़ी होती है, उसको आपको पीछे देखना है कि उसमें कितना कितनी मात्रा में चीजें हैं, उसी हिसाब से आपको चीजों को शामिल करना है अपने खाने में या फिर आपको उसका सेवन करना है। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
2: तो दोस्तों, अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
4: 870-001-4242।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
9: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु 5 वर्षेषु निवेशप्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे 18 दिनाङ्के 10 राज्याणां 24 राज्यसभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणामकरोत्। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य

0: जो जय हिंद।
1: विनय भैया,
0: देश भैया,
1: देखो पसीना इतना छुई रहा है कि समझ लियो कि पोछत पोछत जीव बिल्लाई गवा है, और ये माथ हाथ गाल वोल तो एकदम कल्लात है कि का बताई। बड़ा
0: एहद के कह रहा कि भैया जहाँ जाए खो तहाँ सवेरे निकल जाए।

0: या फिर संध्या का जाए, लेकिन तुम्हारे जिद्द है कि मानते ना निकल ले हो 2 बजे, अब पूरा घाम झेल के यहाँ तक आया है।
1: अब भैया का किंजा, जब जरूरी होत है तो निकले पड़त है, लेकिन हाँ यूँ कहबे कि जीव बहुत डेरात है कि कहूँ कछु गड़बड़ ना हो जाए, काहे से कि यही टाइम लू बड़ी प्रचंड चली रही है।
0: बिल्कुल भैया, देखो सबका समय होता है, और समय इसमें गर्मी क्या रहे, लू बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, कभी कभी उमस भी हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हाँ अपने के यहाँ बचाए का रखे गए हैं, क्योंकि कहा जाता ना कि चाहे जितना हो दिन सबका आवत है, तो चाहे जितनी गर्मी हो लेकिन
1: बिल्कुल भैया
0: उतार गर्मी क्या हुई, लेकिन ये जो मौसम क्या जब चरम पर होते अपने मौसम, चाहे ठंडक हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, तो कुछ ना कुछ हम लोगों के यहाँ एहतियात बरतक पड़ता है, वहीं मौसम के यहाँ तो रोका ना जा सकता।
1: बिल्कुल भैया, जो ना आप ये कह रहे हो कि एहतियात बरतक होते, तो अपन देखो हम अंगोछा अंगोछा से सिर बांध के फूल आस्तीन के कपड़ा पहिर के और पानी साथे लेके निकली था कि पानी ओनी पियत रहो भैया, ताकि जौन है शरीर में पानी का कमी ना होए और कौनो तरीके के रोग व्याधि ना होए। कहे से जब गर्मी लागत है और पानी शरीर में कमी हो जाते है तो भैया तमाम तरीके की बीमारी हो जाते हैं।
0: देखो भैया ये तो है, खान पान तो खैर असर शरीर पर करता है, लेकिन जो बाहरी पर्यावरण है या मौसम है उसका फर्क हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है, तो इसके लिए जरूरी आजकल है कि जल्दी उठो सवेरे, अपन काम निपटा लो, जब तक धूप तेज हो तब तक घर आ जाओ, बर्दाश्त के बाहर अगर धूप हो रही है तो जिद कह के उमा ना जाओ ना उमा काम करो। दूसरा है कि संध्या का चलो, सुबह चलो दोपहर का बिल्कुल बंद कर दो, कहावत कही जाता है कि जैठ है पंथ साढ़े बेल,
1: तो सही बात है,
0: जैठ में पंथ जो है मतलब रास्ता जो है उसका
1: कठिन
0: हो जाता है, ना चलो। और इसके साथ साथ जब खान पीन की बात बताया, तो जैसे आम के पना है, पुदीना है, शिकंजी है, नींबू के
1: या मौसमी फल हैं जो पानीदार फल होते हैं,
0: कुदरत देह से खूब पानी भर दे सके, खाओ
1: उनके सेवन करो,
0: सेवन करो, और साथ साथ जैसे बेल का शरबत है वह फायदा करते हैं, तो खान पान पर भी ध्यान रखो, साथ साथ जो नपन यू है मौसम के मार या हमेशा एक जैसी नहीं रहते, बच के चलो, इसे अगर दोपहर का निकलना है मान लो बहुत ज़रूरी है तो छाता जरूर ले लो साथ में, सीधे धूप के संपर्क में ना हो, और अगर जो है धूप के संपर्क में आई हो तो आपके बीमारी आई, बीमारी आई तो पैसा खर्च हुई, काम बाधित हुई। भैया एक बात और है कि जो हम पंच बार बार देखे थे कि कभी बहुत अति बारिश हो जाते, कभी अति से ज़्यादा गर्मी होते, कहूँ अति से ज़्यादा जो है जड़ा हो जाते या बेमौसम हो जाते, जब
1: हाँ,
0: संभावना होते तब ना होते, जब संभावना ना हो तब हो जाते,
1: तो भैया ये तो जो अपन जलवायु है के परिवर्तन के कारण होते
0: हैं। हाँ,
1: और जलवायु
0: हाँ, जलवायु परिवर्तन के कई सारे कारक हैं,
1: कारक
0: सबसे बड़ा कारक तो हम सब जने हैं मतलब मनाई
1: बिल्कुल सही बात भैया।
0: तो देखो जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण दायित्व, ये बारे में एक जानकारी लेकर आया हूं, वार्ता है और भैया का बता रहे हैं डॉक्टर नागेश्वर दुबे भैया, तो एक सुना जाए।
2: जलवायु परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं आ रही हैं वो किसानों के लिए और लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाए तो फसल के उत्पादन पे 10-15% का अंतर पड़ जाता है, घट जाती है उत्पादन क्षमता। जलवायु के नियंत्रक कौन कौन से कारक हैं, जिसमें तापमान, सूर्य का तापमान, वर्षा, वर्षा में नमी, जलवाष्प, वायुमंडलीय दबाव, हवा की गति पैरामीटर हैं जो जलवायु को कंट्रोल करते हैं, और इसमें उस स्थान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, समुद्र तल से स्थान कितना ऊंचा है या समुद्र तल से स्थान कितना दूर है, इस पर भी जलवायु निर्भर करती है, क्योंकि वर्षण, अक्षांश और समुद्र तल की से औसत ऊंचाई, वायुमंडलीय दबाव, वायु का प्रवाह, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और पर्वतों के द्वारा हवाओं के मार्ग में अवरोध, ये जलवायु को सीधे प्रभावित करते हैं। वैसे समुद्र का जल बहुत ज़्यादा होने के कारण न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, इसके विपरीत अगर पठार क्षेत्रों में देखा जाए तो पत्थर और रेत या बालू ये जल्दी गर्म होते हैं और रात को जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कौन करता है, 2 तरह के कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करते हैं, एक तो यह है प्रकृति द्वारा नियंत्रण जिसपे मानव का अधिकार नहीं है, दूसरा यह है मानव जनित समस्याएं जो जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन जो मानव जनित समस्याएं हैं जैसे ईंधन जलाना, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तेल, अन्य ईंधन और प्रदूषण, क्योंकि इसके द्वारा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है, यह

भी यद्यप बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पे इसका सीधा असर पड़ता है। जब ठोस जमी हुई उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघलती है तो ठोस जल घट रहा है और समुद्र में तरल जल बढ़ रहा है। इस समुद्र तल के ऊपर जाने के फलस्वरूप जो समुद्री किनारे हैं ये जमीन को ढकते जाते हैं। तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग और समुद्री एरिया ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। दूसरा ये होता है कि मानव जनित गतिविधियों में खनन और प्रदूषण, इसकी वजह से वातावरण की जो गैसें हैं जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जाती हैं और ये पृथ्वी की ऊष्मा को भी रोकती छेकती हैं, जिससे धीरे धीरे तापमान बढ़ता रहता है। तापीय परियोजनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ठेले रहती हैं, जिनकी वजह से भी तापमान में वृद्धि हो रही है। इनका प्रभाव ये होता है कि हमारा जो पृथ्वी के चारों तरफ का सुरक्षा कवच है, ओजोन लेयर है, इन पे भी बढ़ती गैसों का प्रभाव बढ़ता रहता है। वाहन, औद्योगिक क्षेत्रों का भी बढ़ते रहना, ईंधन, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, ये समस्त चीजें और इनका प्रयोग वातावरण में परिवर्तन का मुख्य कारक है। सब लोगों का सामूहिक प्रयास ही समाधान है और वातावरण और जलवायु को समझ लेना कि कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये एक समाधान अच्छा है। तो सबसे अच्छा यह है कि जो भूजल जिसे हम लोग बोरिंग से या सबमर्सिबल से प्रयोग कर रहे हैं, इसका बहुत संतुलित दोहन और सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग को कतई प्रोत्साहित न किया जाए, यथासंभव दुरुपयोग को रोका जाए। प्रदूषण को भी हमें नियंत्रित करना है, संतुलित खनन हो, जीवाश्म ईंधनों का धुआं संतुलित किया जाए, कम से कम किया जाए, राख का उत्सर्जन और उसका निस्तारण, वन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि वनों की कटाई के कारण ताप वृद्धि की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है, पशुपालन को भी आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही समाज के लोगों को जागरूक करना है, मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना कि जो आप जल प्रयोग कर रहे हैं इसका दुरुपयोग न होने पावे। सिंचाई की जो विधियां हैं इनमें भी परिवर्तन का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पूरा खेत भर के सिंचाई करते हैं, कुछ फसलों को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी जो है सिंचाई वाले जल को कम किया जा सकता है, कम जल में ज्यादा सिंचाई की जा सकती है। गिट्टी बालू इत्यादि का जो खनन परिवहन हो रहा है जिससे धूल गर्दा स्थानीय क्षेत्र में हो रही है, इन्हें भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। ब्लास्टिंग्स हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसके कारण भी काफी कुछ फैल रहा है। अन्य जो उत्पाद हैं, जो सीमेंट है, अल्मोनियम है, राख है, इनका उचित निस्तारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो प्रकृति द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है उसे तो सीधे कंट्रोल कर पाना मनुष्य के क्षमता में नहीं है, लेकिन जो मानव जनित वातावरण में चीजें बढ़ाई घटाई जा रहे हैं जिनसे जलवायु सीधे प्रभावित हो रही है, अगर लोग जागरूक होंगे इनमें कमी आएगी तो निःसंदेह इससे जो है जलवायु परिवर्तन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छे इसके परिणाम सामने आएंगे। तो वनों की अंधाधुंध कटाई न की जाए, वृक्षारोपण किए जाएं, पशुपालन में वृद्धि की जाए, जीवाश्म के जलने वाले धुएं पे कंट्रोल किया जाए, अगर सब लोग मिल के प्रयास करेंगे तो निःसंदेह जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी गति में कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इस समय पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल तापमान के वृद्धि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तापमान में जो वृद्धि धीरे धीरे हो रही थी उस वृद्धि में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। जब भी हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और वातावरण में जल के कण, ये जब भी वातावरण में बढ़ने लगते हैं तो की वजह से कि पृथ्वी के बाह्य आवरण के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है जिसे हम लोग ओजोन लेयर करते हैं, जो मोटा मोटी 25 किलोमीटर के ऊपर है, ओजोन लेयर में भी इन गैसों के बढ़ने के कारण क्षरण हो रहा है, बीच बीच में छेद जैसे स्थिति पैदा हो रही है। और ग्रीन हाउस गैस ही हैं जो पृथ्वी को ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म होने से बचाती हैं। तो इस तरह से मनुष्य भी अपनी गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है, जैसे कुएं, तालाब और अन्य जल स्रोत।

0: जो पहले बहुत हुआ करते थे और सब लोग सामूहिक रूप से उनमें सफाई, गहराई, जल संरक्षण का कार्य किया करते थे, उसे हम लोगों ने ध्यान कम दिया। पाट के भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि जहाँ भी जल और जलाशय हैं उनमें बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाए। यही बरसात का पानी जब पृथ्वी में नीचे जाएगा तो रिचार्ज करेगा, यानी भू जल की मात्रा को बढ़ाएगा। अंधाधुंध बोरिंग की वजह से जो हमारा भू जल स्तर है, सब सरफेस ग्राउंड वाटर है, ये नीचे की तरफ भागा जा रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, बगीचे सूखते जा रहे हैं। तो सबको जागरूक करके सामाजिक जागरूकता के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूंढना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, नियंत्रित हो। धान की पराली जो जला के कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया जाता है, इसे ग्रामीण लोग कम कर सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से जल का संचय किया जाए, क्योंकि यही संचित जल जो है पृथ्वी में नीचे जाएगा और भूजल को बढ़ाएगा। गिट्टी बालू वगैरह का खनन परिवहन भी बड़े नियमित ढंग से किया जाए और वैज्ञानिक विधियों के हिसाब से खनन किया जाए। कल कारखानों के द्वारा जो प्रदूषित राख छाई निकाल के पानी में सीधे डाल दिया जाता है, इसे भी घटाया जाना चाहिए। आज का सोनभद्र, सोन नदी के किनारे हम लोग सीधे जाके नदी का पानी पी लिया करते थे। इसके बाद से तापी परियोजनाओं से जो राख निकलती थी उसे जल में बहा के सोन नदी में डाला जाने लगा, और स्थिति ये हो गई कि वो पानी मनुष्य क्या जानवर के भी पीने लायक नहीं बचा। तो कुछ चीजें हमारे द्वारा, हमारे अज्ञानता की वजह से या हमारे निग्लिजेंस की वजह से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे भी जहां तक संभव हो रोका जाना चाहिए, या रोक नहीं सकते तो कम से कम कम तो करना ही चाहिए। और मानव के द्वारा दुष्प्रभावी गैसें वातावरण में लगातार डालते जाने के कारण तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से मौसम भी बदल रहा है और सूखे की आशंका बढ़ रही है। अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो फसलें प्रभावित होती हैं।
1: देवेश भैया।
2: हाँ विनय भैया।
1: देखो कितनी बढ़िया जानकारी डॉक्टर नागेश्वर दुबे भैया दीन कि जलवायु परिवर्तन में हाँ अपने ग्रामीण लोगों के का दायित्व है। हम तो कहबे कि भैया देखो जो अपन जमीन है, अपन जंगल है, अपन जल है, ये सब बचाए के हैं, रखे के हैं, सुरक्षित रखे के हैं, प्रदूषित ना हो दे के हैं। क्योंकि देखो हमारी पीढ़ी से हमका दहेज तो हमका चाहिए कि सुंदर और स्वस्थ वातावरण हम अपनी
2: बनाए के रखी, ताकि हमार जो आगे वाली पीढ़ी है वही का भी सब देखे के मिले और सुरक्षित तरीके से मिले भैया। तो यही वार्ता के लिए भैया डॉक्टर नागेश्वर दुबे भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और भैया देखो एक बात और है कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए यह चिंता करी कि जो हमारा अवली पीढ़ी है वह खाली न हो, बिना हुनर के न हो, हुनरमंद हमारी पीढ़ी हो और काम करे वाली पीढ़ी हो। क्योंकि जो अपन जनसंख्या होते है अगर वह कामगार होते तो एक तरह से मजबूती होते देश।
2: बिल्कुल भैया, ऐसा कौनो प्रबंध किए जाए कि उनका रोजगार के पीछे भागे का ना पड़े, बल्कि ऐसा उनके पास हुनर रहा है कि वो चार मनाइन का अपने साथ जोड़ के उनका जो उन्हें रोजगार दे सकें।
1: तो देखो यह के खातिर सरकार भी सोच रही है कि पर काम किया जाए, तो उनके खातिर स्किल इंडिया प्रोग्राम चलावा जा रहा, कार्यक्रम चलावा जा रहा।
2: हाँ भैया, इमा प्रशिक्षण दिन जाते है जो आपके अंदर जौन काबिलियत है,
1: हुनर है,
2: जौन आपके अंदर हुनर है, वही का निखारे के काम कर रही है कि वही का और अच्छे तरीके से आपका प्रशिक्षित करके, प्रशिक्षण प्रदान करके आपका एक ऐसन माध्यम, ऐसन रास्ता दे दी जाए कि आप जौन है रोजगार कर सको, धनोपार्जन के राह आपके खुल सके।
1: बिल्कुल भैया, इमा जैसे आपका कोई परंपरागत अगर कौशल है तो यहाँ विकसित कर सकते, तलाश कर सकते हो, या आपके रुचि विशेष कोई काम में है या कौशल में है तो में आपके यहाँ सहायता मिलते। और ईमा जुड़े के बाद में आपके हाथ में जब कोई कौशल आ जाता है, चाहे जो हो, जैसे अभी समय देखो भैया बिजली के जो है कितनी दिक्कत हो रही है और खास करके बिजली के उपकरण के समस्या बहुत,
2: बिल्कुल देखो गर्मी में पंखा है,
1: पंखा कूलर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो जिनमें होते, अगर इस समय कोनो मनाही बिजली का काम जानते भैया, चाहे इन्वर्टर क्या हो, चाहे वायरिंग क्या हो, चाहे बिजली पंखा बनावे क्या हो, तो उनके पास इतना काम मिल जाते कि साल भर का काम चलत रहा है। ऐसे जाड़ा जब होता तब हम काम मिले थे। तो जैसे जौन काम अगर आप कह लिया हो, कोनो हुनर है आप करे में है, तो ये मान लो कि आपके यहाँ जो है किसी के पीछे जो नौकरी वाली बात कर कि भागे के नहीं पड़ी, आप अपन व्यवसाय खड़ा कर सकते हो, चार लोगों का जोड़ सकते हो और पूरे परिवार के यहाँ काम दे सकते हो अपने।
2: बिल्कुल सही बात भैया। और देखो यूँ नहीं होता कि लड़के केवल, जौन बिटिया लोग हैं या नारी महिला समाज जौन है उनको अगर कोनो प्रशिक्षण, तमाम जने देखो उनका सजे संवरे के बड़ा शौक होता है, तो ब्यूटिशियन के कोर्स

0: सकत हैं, वहू का प्रशिक्षण ले सकत हैं। तो इसे ई है कि आपके अंदर जौन हुनर है वही का और निखारा जाए और ऐसा रोजगार लावा जाए कि खुद के कमाई तो होबे करे, वही के साथ साथ आप और जनन का भी अपने साथ जोड़ के रोजगार के अवसर प्रदान कर सकत हो।
1: बिल्कुल भैया, अगर ये सब चीजन पर हम पंच ध्यान दी तो अपन परिवार खुशहाल हुई, अपन गाँव खुशहाल हुई, अपन देश खुशहाल हुई। और भैया देखो एक बात और है, अब बात है गौनई के, तो गौनई आज हम बड़ा ढूंढ के हैं, एक लाए हैं समेत शर्मा है, तो सुना जाए।
0: बिल्कुल भैया, और सुना जाए ये जनेऊ गीत।

0: अपने लोकगीतन के बहुत अच्छी बात होते
1: हाँ।
0: कि जब वो गाए जाते हैं
1: हाँ।
0: या कहूँ बाजत हैं
1: हाँ।
0: तो जौन चित्रण होते
1: बड़ा भावपूर्ण चित्रण होते
0: भावपूर्ण चित्रण होते वो आंखी के सामने एकदम दिखाए लागत है।
1: बिल्कुल भैया सही कहे। देखो लोकगीत जो है अपनी मिट्टी में हाँ जो है रचे बसे होते हैं, अपनी जो है ग्रामीण जीवन लोक जीवन में रचे बसे होते हैं, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष ना होते जिससे संबंधित लोकगीत अपने में हाँ उपलब्ध न होना। अब जैसे ब्याह के बात है तो ब्याह में हाँ मतलब हर अवसर पर मतलब हर जैसे जन नेक होते जन अवसर होते उनके अलग अलग गीत होते हैं।
0: बिल्कुल भैया
1: एहत का जैसे जीवन बच्चा पैदा हो चाहे अन्नप्राशन हो चाहे मुंडन हो चाहे जनेऊ हो चाहे ब्याह हो चाहे बारात विदाई हो, मतलब बहुत तके जो है लोकगीत होते हैं और ये लोकगीत जो है अपने संस्कारण के अपनी संस्कृति के आगे बढ़ा होते हैं, वाहक हैं एक तरह से।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो भैया ये तो बात हो गई लोकगीतन के, अब थोड़ी बात कर लीजिए की अपनी खेती किसानी
0: की।
1: तो भैया देखो खेती किसानी में एक बहुत बड़ा जो होते चुनौती होते कि जौन हम पंच फसल मतलब पैदा करे थे खेत में उगाई थे तो उमा कीट बीमारी बहुत लागत है।
0: बिल्कुल भैया सबसे बड़ी चुनौती तो ये होता है कि पहले खेती बाड़ी कई के अच्छे से फसल उगाओ और फिर ये चुनौती रहत है कि यही का कीड़ा मकोड़ा रोग व्याधि से बचाओ।
1: बिल्कुल भैया अब देखो इस समय जायद के फसल चल रही है
0: हाँ।
1: तो जायद के फसल में हाँ यू है कि ज्यादातर जमीन जो है सूखी पड़ी है, कहीं कहीं कोई सब्जी बोई से कुछ और बोई से तो जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं उनका हमला कुछ ज्यादा हो जाता है क्योंकि रकबा कम हो जाता है हरियाली का,
0: सही
1: तो जो है ज्यादा हो जाते हैं। अब इमा एक बात और है कि कीट नियंत्रण जब हम पंच करी थे तो यू होते कि ज्यादातर रासायनिक चीजन का इस्तेमाल करी थे, रासायनिक जिनका कीटनाशक होता उनका इस्तेमाल करी थे।
0: बिल्कुल भैया एक कहूँ ना कहूँ मन में ये बात रहा थे कि रसायन के प्रयोग करवे तो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं और
1: कहूँ ना कहूँ बात है सही भी है कि परिणाम तुरंत दिखाई पड़ते हैं और कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो दिखाई नहीं पड़ते
0: इके दुष्प्रभाव
1: ना दिखाई पड़ते हैं। वो दुष्प्रभाव ये है कि जैसे भैया जौन दवा आप या कीटनाशक दवा ना कहे जहर कहो कि जौन आप कीटनाशक डाले हो तो ऊपर चेतावनी लिखी होती है कि भाई इका प्रयोग करके बाद में कोई माँ 10 दिन ना खाओ 50 दिन ना खाओ 60 दिन ना खाओ, कहीं कहीं तो होता है कि इका छिड़के बाद 90 दिन तक ना खा चाहिए।
0: बिल्कुल भैया तो कहूँ हमका यूँ लग रहा है कि आपकी बातन से ये इंगित हो रहा है कि रासायनिक जो प्रक्रिया रहा है पद्धति रहा है वही का ना अपनावत भय हम सबका फसल सुरक्षा खातिर जैविक उपाय करेंगे
1: हाँ। और जब रासायनिक करें तो एक और बड़ा नुकसान छिपा होता है जो हम पंच ना जान पाए थे क्योंकि हम लोगों के यहाँ जानकारी इतनी हो ना है कि बहुत सारे कीट होते हैं बहुत सारे जीव जंतु जो अपनी खेती में सहायक होते हैं मित्र कीट कहे जाते हैं
0: हाँ, और जब जो अपन शत्रु कीट होते हैं या कीड़ा मकोड़ा होते हैं उनका खाए लेते हैं नष्ट कर देते हैं उनका नियंत्रित,
1: लेकिन जब हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कोनो भेद ना होता पर मित्र कीट और शत्रु कीट
0: दोनों खत्म हो जाता है
1: तो यह एक बड़ा नुकसान होता है। धीरे धीरे जो अपन खेती के पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा उसका नुकसान पहुंचे थे। अब भैया जैसे जब हम आए थे इका उपाय का हो सकता है भाई इतनी बड़ी समस्या है और भाई किसान के फसल पर बचाव के सुरक्षा करे के हैं और जैविक कीटनाशक नए रासायनिक कीटनाशक नए उपयोग करे के हैं तो उसका रास्ता है जैविक विधियां हैं यानी फसल सुरक्षा के लिए।
0: बिल्कुल भैया
1: जैसे देखो उमा तमाम सारी चीजें होती हैं कहीं कहीं पर नीम के जो तेल होते
0: हैं नीम के पत्ती नीम के तेल
1: हाँ।
0: या वो दसपर्णी अर्क जो बनाया जाता है
1: जीवा मदार धतूर
0: तमाम चीजें मिला के
1: लहसुन ये सब चीजें मिला के हैं बनावा जाते तो उसका पंच भाई प्रशिक्षण ले सकते अपन कृषि विज्ञान केंद्र जो है नियमित रूप से ऐसे प्रशिक्षण चलावत है। इसके साथ साथ अपने यहाँ वैज्ञानिक भी आवत हैं अपने आकाशवाणी में यहाँ स्टूडियो में आवत हैं वो बनावे की विधि बतावत हैं तो उनका प्रयोग
0: और कुछ भैया ऐसे तरीका बताए जाते हैं जिसके जो है आप यू नहीं कह सकते हो कि इका बनावेक है वो उपलब्ध रहा था ना आप उसका ले जा सकते जैसे वो चिपकावे वाला ट्रैप जोन होते
1: हाँ,
0: नीला पीला ट्रैप होते है वही का लाके आप लगा सकते हो तो कीड़ा मकोड़ा वही पे चपक जाते हैं और फसल का नुकसान कम होते है।
1: वह पर हम बात करे जा रहे हैं कि देखो कुछ ट्रैप ऐसा होता है मतलब वहाँ चिपचिपा पदार्थ लगा है और उसका रंग एक विशेष प्रकार से ज्यादा पीला होते तो पीले रंग पर कीट आकर्षित
0: हो
1: जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इस तरह से प्रकाश प्रपंच है कि भैया जैसे प्रकाश जला दिया हुआ उमा कीट जो है देखो किरण के आदत होते हैं कि जहाँ प्रकाश
0: की तरफ आकर्षित
1: होते हैं तो उनके नीचे ऐसे व्यवस्था बनाई है कि खत्म हो जाते हैं या फिर अगर ना कोई व्यवस्था है तो कहीं पर भी प्रकाश जला दो एक टब में है या कोई बर्तन में पानी भर के धर दो बड़े उमा थोड़ा कोई कीटनाशक डाल दो तो उमा जो है कूद फान के यहाँ गिरते हैं खत्म हो जाते हैं। एहत का एक फेरोमैन ट्रैप आवत है तो उमा होता है कि जो हानिकारक कीड़ा होते हैं वो आकर्षित होकर उमा फंस जाते हैं और मर जाते हैं तो आपके यहाँ जो है बिना

0: जहर के रे जहर मुक्त जो है उत्पादन आपके हो जाते हैं। और भैया ये जो कार्यक्रम बताए गए हैं इनमें लागत भी बहुत कम लागत है।
1: बिल्कुल भैया, और यही तरीके से भैया अगर आप फसल चक्र अपनावत हो या खेत के अपने गहरी जुताई करत हो तो ये भी बहुत ही अच्छा लाभ देत है आपके फसल के सुरक्षा करे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो जैसे कहा था एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के बात कर रहे हो कि जुताई से लगाए के हाँ, और जैसे आपका है बीज है तो का उपचार कर लो, मिट्टी है तो का उपचार कर लो, तो उससे कीड़ा बीमारी रोग जो है वो काफ़ी कुछ दूर हो जाते हैं अपनी फसल से ने। और ई प्रकार के अगर आप तकनीक अपनाओ तो रासायनिक कीटनाशक का खर्चा भी बची और दूसरी बात आपका जो उत्पाद है गुणवत्तापूर्ण हुई।
1: भैया
0: देखो एक बात और है,
1: हाँ हम लोग वो हमका देखो याद आएगी कि आज है शुक्रवार।
0: हाँ,
1: और अपने श्रोता पंचम के भैया इंतजार रहा था कि कृषि समाचार पे आधारित जौन किसान डायरी।
0: हाँ तो भैया आज देखो जो कृषि समाचारों पर आधारित किसान डायरी है, इका आलेख किन है शरद प्रकाश पांडे, वाचन स्वर है नीना सोनकर बहनी क्यार, और संपादक है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो इका सुना जाए।
2: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, किसान डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रस्तुत है सुर्खियां। खरीफ उत्पादन 1.5 गुना करने की बनी रणनीति, भेड़ पालन योजना के लिए 3.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति, प्रदेश में 372 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद, खरीफ में 2 लाख कुंतल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने अलनीनो के खतरे से किया आगाह, मौसमी आपदा प्रभावित औद्योगिक फसलों की होगी क्षतिपूर्ति, प्रदेश में बनेंगे 8 नए गो संरक्षण केंद्र, गन्ना सर्वेक्षण की नई नीति जारी, और प्रदेश के हर गांव में मॉडर्न डेयरी की योजना। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ फसलों का उत्पादन 1.5 गुना बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में वर्ष 2026-27 में खरीफ खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन को 225 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 350 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मक्का दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि पर विशेष बल देते हुए किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। गोष्ठी को वर्चुअली संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में किसानों तक उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र एवं वैज्ञानिक विधियों को पहुँचाना प्राथमिकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक उपयोग पर जोर दिया, जिससे फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को सुरक्षा मिल सके। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार ने समय से बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेश उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने बताया कि 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों का आच्छादन सुनिश्चित करते हुए 3.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए विभागीय समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन एवं संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं बड़ी संख्या में कृषकों ने सहभागिता की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में भेड़ तथा ऊन विकास के तहत भेड़ पालन की योजना के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइंस का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। योजना अंतर्गत अनुदान की धनराशि लाभार्थी के बैंक अथवा डाकघर खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं प्रसंस्करण नीति की समीक्षा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। प्रदेश में 372 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है, जबकि कुल उपलब्धता 407 लाख

लाख मीट्रिक टन तक है। प्रदेश में लगभग 3 करोड़ किसान गेहूं उत्पादन से जुड़े हैं। इसके बावजूद सीमित प्रसंस्करण क्षमता के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं कच्चे अनाज के रूप में दूसरे राज्यों में चला जाता है, जिससे मूल्य संवर्धन, जीएसटी, राजस्व और रोजगार के अवसर प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। प्रदेश में 559 रोलर फ्लोर मिल्स हैं, जिनकी कुल मिलिंग क्षमता 225 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन वास्तविक उपयोग लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन तक सीमित है। इसके अलावा 40,000 से अधिक आटा चक्कियां भी संचालित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि राज्य के भीतर ही गेहूं प्रसंस्करण को बढ़ावा मिले तो रोजगार, बिजली खपत, जीएसटी संग्रह और खाद्य उद्योगों में बड़ा विस्तार हो सकता है। समिति ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मिलों द्वारा राज्य के भीतर प्रसंस्करण हेतु खरीदे गए गेहूं पर मंडी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट दी जाए, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों पर ये छूट लागू न हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2026 के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रदर्शन और मिनीकिट योजना के तहत 2 लाख कुंतल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। इस निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 75,000 कुंतल बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसानों को 26,000 कुंतल प्रमाणित बीजों का वितरण भी किया जा चुका है। खरीफ सीजन के मुख्य फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत धान बीज का लक्ष्य 80,000 कुंतल निर्धारित किया गया है, जिसमें से 64,000 कुंतल बीज उपलब्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त तिलहन और दलहन फसलों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत मूंगफली का लक्ष्य 57,500 कुंतल, उड़द का 24,000 कुंतल, अरहर का 21,000 कुंतल, मूंग का 4,000 कुंतल, तिल का भी 4,000 कुंतल और सोयाबीन का लक्ष्य 3,000 कुंतल निर्धारित किया गया है। मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, काकुन और कुटकी के लिए भी बीजों का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें बाजरा के लिए 2,000 कुंतल और रागी के लिए 1,500 कुंतल का लक्ष्य शामिल है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने हेतु जल्दी से जल्दी पोर्टल पर आवेदन करें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश बीज निगम के एमडी श्री टीएम त्रिपाठी तथा अपर निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र श्री अनिल पाठक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलनीनो के प्रभाव से मौसम में अचानक हो रहे बदलाव से प्रदेश के अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि अलनीनो के संभावित प्रभाव से आगामी वर्षों में फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए प्रदेश को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के खाद्यान्न भंडार पर्याप्त और मजबूत होने चाहिए। प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मौसमीय घटकों से प्रभावित औद्योगिक फसलों एवं बागों का शीघ्र आकलन करते हुए आपदा राहत प्रबंधन से संबंधित शासनादेशों के अंतर्गत जिला अधिकारियों के माध्यम से कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किए जाएं। उन्होंने जनपदीय उद्यान अधिकारियों को इस संबंध में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में क्षतिपूर्ति के नियम स्पष्ट नहीं हैं अथवा निर्धारित धनराशि पर्याप्त नहीं है, उन प्रकरणों में राहत आयुक्त को प्रस्ताव भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रभावित कृषकों को समय पर राहत उपलब्ध कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गो संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 6 जनपदों में 8 नए गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत

0: धनराशि से जनपद फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, संभल एवं आजमगढ़ में एक एक तथा गोंडा में 3 गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने बताया कि पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। इस क्रम में गन्ना सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, जो 30 जून 2026 तक चलेगा। प्रदेश में गन्ना सर्वेक्षण कार्य को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद एवं परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान खेत में मौजूद वास्तविक गन्ना किस्म का ही अंकन कराएं, जिससे किसानों के खेतों में बोई गई किस्मों के अनुरूप ही विभागीय आंकड़े अभिलेखों में दर्ज हो सकें। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में अब केवल गन्ने का रकबा ही नहीं, बल्कि अंतः फसली खेती एवं एग्रो व फार्म फॉरेस्ट्री का भी विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय बढ़ाने वाली फसल प्रणालियों का वास्तविक आकलन संभव हो सकेगा। साथ ही ट्रेंच एवं जोड़ीदार पंक्ति विधि से बोए गए गन्ने की यांत्रिक गन्ना कटाई में सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यालय पर टोल फ्री किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जो प्रतिदिन 24 घंटे संचालित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन 4 डेयरी मास्टर प्लान लागू किया है। इसके तहत कई योजनाओं पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत गांव-गांव में डेयरी इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन 4 डेयरी मास्टर प्लान एक मुख्य पहल है, जिसमें गोपालन संबंधी 4 योजनाओं को जोड़ दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन को जोड़कर किसानों की आय को दोगुना करना है। खास बात ये है कि इस योजना के तहत 2 से लेकर 25 गायों तक की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर भारी सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसान भी आसानी से डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकें। ऑपरेशन 4 दरअसल 4 प्रमुख योजनाओं का एक संयुक्त मॉडल है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना शामिल है। तो ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का ये अंक संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: दिवेश भैया।
2: हाँ विनय भैया,
1: देखो जन कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी हम पंच लेके आए थे, तो उद्देश्य यू हो थे कि जो सप्ताह भर की कृषि जगत की गतिविधियां हैं किसान भाई तक पहुंचे। तो देखो ये जो किसान डायरी रहा, आज के का आलेख रहा है शरद प्रकाश पांडे का,
2: और वाचन रहा है नीना सोनकर बहनी की, और संपादन रहा है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का।
1: तीनों जनन के हम बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखो जो है एक खेमटा गीत लेके हम पंचन के खातिर आए हैं, वही का सुना जाए।
3: अरे दिलवा के बतिया मन ना भावे बलम।

0: मन ना भावे बलम परदेसिया। भाई देखो शंकर यादव उनके साथ इनके शर्मा पंच भाई खेमटा सुनिन। और देखो अब बात कर ली जाए जब सबसे पहले कि इनका रहे कि मौसम के, और मौसम के साथ में पहले एक बहुत जरूरी बात और हवा कर लीन जाए, बात छुट्टी जाते हैं
1: उनका भैया
0: वो है फार्मर रजिस्ट्री के। देखो भैया पंच भाई सब जानते हैं कि इसमें फार्मर रजिस्ट्री करावे का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में अपने, तो पंच भाई कहा जानना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाली जन योजनाएं हैं, चाहे आपके बीज खाद हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे कोनो प्रकार की और सुविधा हो, बिना फार्मर रजिस्ट्री के वो चीज़ें अब उपलब्ध नहीं हुई हैं। तो बड़े आसान सा तरीका है, आप अपनी जमीन के कागज लो, अपना आधार लो, मोबाइल नंबर लो, बैंक खाता भी लो, और उसके बाद में सब कुछ ले जाके हम फार्मर रजिस्ट्री कराए।
1: बिल्कुल भैया, आप फार्मर रजिस्ट्री अपन जरूर करा लो ताकि कोनो भी जो सुविधा आवे वही के लाभ आपका मिल सके, आप वही से वंचित ना रहो।
0: बिल्कुल। और भैया अब बात हो जाए मौसम के, देखो मौसम में कुछ बतावे का ना है, सब कुछ सामने है।
1: बिल्कुल भैया, तो
0: तेज जो है लू और गर्मी की चेतावनी चल रही है इस समय, और मौसम बहुत ही शुष्क गर्म और जिका कहते हैं कि धूप भरा रही। तो ऐसे मौसम में भैया अपने के यहाँ, अपने परिवार के यहाँ, अपनी फसलों के सुरक्षा करे के हैं, जहाँ खेत में लगातार निगरानी करता रहो, अगर नमी कम दिख रही है खेत में तो सिंचाई करता रहो जो फसलें अपने खेत में लगी हैं, और खास करके अपने हरहा गोरन के जरूर बचाओ इस समय मौसम के प्रकोप से ने। भैया छाया में बांधो और उनका नहलाओ,
1: ताजा पानी दो भैया,
0: ताजा पानी,
1: रखा पानी ना दो कि गर्म हो गया है वो पानी उनका पिया दो।
0: हाँ, और तो अगर हरे चारे की कमी है तो अपन रातिब जो है वो बढ़ा दो, दाना जो है बढ़ा दो, जिससे अपन पशु जो है वो स्वस्थ बने रहें और उत्पादन जो है आपका बढ़िया चलत रहे।

0: अब भैया देखो, सब बातें तो हो गई लेकिन बाजार के भाव कुछ नहीं बता रहे हो।
1: बिल्कुल भैया, देखो चार जनपद के मंडी भाव हमारे पास है तो वही का बता रहे हैं। गेहूं दड़ा लखनऊ मंडी में 2595 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 2585 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा 2543 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या 2585 रुपया प्रति क्विंटल। चावल कॉमन लखनऊ मंडी में 3470 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर 3500 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा 2975 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या 3040 रुपया प्रति क्विंटल। मटर सफ़ेद लखनऊ मंडी में 4400 रुपया प्रति क्विंटल और कानपुर में 4510 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा 4250 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में भी भैया 4250 रुपया प्रति क्विंटल।
0: भैया ये तो तुम बताए अनाज के भाव, कुछ तरकारी के बात हम कह ली।
1: बिल्कुल,
0: देखो जो आलू है वो 720 रुपया प्रति क्विंटल लखनऊ में है, 650 रुपया प्रति क्विंटल कानपुर में, 725 रुपया प्रति क्विंटल गोंडा में है और 720 रुपया प्रति क्विंटल अयोध्या में है। टमाटर जो है पका वो 1550 रुपया प्रति क्विंटल लखनऊ में है, कानपुर में 1350 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2325 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 1800 रुपया प्रति क्विंटल। प्याज जो है उका भाव रहा थोक में है लखनऊ मंडी का 1300 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 1290 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में है 1250 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में रहा 1200 रुपया प्रति क्विंटल। यू भैया रहा बाजार का भाव।

0: रुपया प्रति क्विंटल।
1: भैया ये तो तुम बताए अनाज के अभाव, कुछ तरकारी के बात हम कहली।
0: बिल्कुल,
1: देखो जो आलू है वो 720 रुपया प्रति क्विंटल लखनऊ में है, 650 रुपया प्रति क्विंटल कानपुर में, 725 रुपया प्रति क्विंटल गोंडा में है, और 720 रुपया प्रति क्विंटल अयोध्या में है। टमाटर जो है पका वो 1550 रुपया प्रति क्विंटल लखनऊ में है, कानपुर में 1350 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2325 रुपया प्रति क्विंटल, और अयोध्या में है 1800 रुपया प्रति क्विंटल। प्याज जो है उका भाव रहा थोक में है लखनऊ मंडी का 1300 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 1290 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में है 1250 रुपया प्रति क्विंटल, और अयोध्या में रहा 1200 रुपया प्रति क्विंटल। यूँ भैया रहा बाजार का भाव। और देखो भैया अब जल्दी से जो अपन काल के कार्यक्रम हैं उनके बारे में हाँ जरूर चर्चा कर लियो।
0: कल श्रोतापंच लोकायतन में सुनी है भेंट वार्ता, एक जनपद एक उत्पाद और आत्मनिर्भर गांव। वार्ताकार हुई हैं आनंद सिंह और भेंटकर्ता हुई हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और खेती किसानी में पंच भाई सुनी है भेंट वार्ता, खरीफ में भूमि और बीज शोधन। वार्ताकार डॉक्टर विवेक कुमार पांडे भैया और भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय
1: भैया। इसके साथ अपने कार्यक्रम का पता बता दी जिससे आपकी प्रतिक्रिया आपके सुझाव हम तक पहुंचे। हमारा कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। इसके साथ साथ ईमेल का पता है farmandhome@lko@gmail.com। तो इस पर अगर आप अपन प्रतिक्रिया हम तक भेजत हो, अपन सुझाव अपन भेजत हो, या अपन कुछ सुना चाहते हो तो भेजत हो, तो हम पंच पूरी कोशिश करी थे कि आपके वह चीज पूरी हो। और देखो अब घड़ी का इशारा है, पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
0: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले चार दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 19वें रोजगार मेले

0: का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
1: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
3: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपनी स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन

0: कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गाँवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा, जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हैं, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
2: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण रात होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शिरले जैन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, IIT कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर शिबा राकेश की बातचीत। विषय है एक्सेप्टिंग

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
2: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के संक में आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। इस विषय पर डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा के साथ भेंट कर रहे हैं सुभाष खन्ना।
3: श्रोताओ नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और श्रोताओं, जैसा आपने देखा भी कि शिक्षा आदिकाल से चली आ रही है, जहां हम किसी विशेष स्थान पर किसी जंगल में गुफाओं में जाकर हम गुरु के समीप शिक्षा लेते थे। समय बदलता रहा, समय ने परिवर्तन किया। जैसे अन्य विधाओं में परिवर्तन हुए, अन्य विषयों में परिवर्तन हुए, वैसे ही शिक्षा में भी मूलभूत परिवर्तन हुए, कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए। और अब शिक्षा केवल स्थान केंद्रित ना होकर, शिक्षक केंद्रित ना होकर के वो बाल केंद्रित हो गई और व्यक्ति की सुविधा के अनुरूप भी होती गई। अब ये किस तरह की शिक्षा है, इसे कहाँ ग्रहण किया जाता है, कैसे हम जाने कि कौन से कोर्स में कब एडमिशन होता है, कितनी वैलिडिटी है उस कोर्स की, और क्या ये रोजगार में भी सहायक है, ये ढेर सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा से। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं इग्नू लखनऊ में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जब ये शिक्षा में परिवर्तन आया कि जो शिक्षा है वो किसी भी मोड में होने लगी, किसी ऐसी जगह पर एनरोल करा लिया और शायद क्लास वास

0: भी नहीं जाना पड़ रहा है, क्या है ये, कैसे शिक्षा लेते हैं लोग?
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात करें
0: जी
1: तो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो एक जो गुरुकुल प्रणाली थी प्राचीन शिक्षा की, वो प्रणाली बहुत ही पॉपुलर थी। और पहले एक गुरु के आश्रम में जाके जो हम कहते हैं ना भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी जो है एक शिक्षा लोग लेते थे। और उसमें वो जो शिक्षा थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है किताबों तक
0: किताब
1: सीमित थी, बल्कि हर तरह से युद्ध विद्या से लेके शस्त्र और शास्त्र जिसको हम कहते हैं, दोनों विद्या में जो है विद्यार्थी निपुण होते थे और उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप बदला और जैसे जैसे स्वरूप बदला शिक्षा भी जो है कहीं ना कहीं जॉब केंद्रित होती गई। और इसके बाद क्या है कि अगर हम 20वीं सदी से बात करें
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो नौकरी पेशा और इस तरह से जो डेवलपमेंट की चीजें हैं उसमें एक अहम रोल के रूप में देखी जाने लगी। समय के साथ साथ देखेंगे आप तो जो हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति जो
0: जी
1: गुरुकुल व्यवस्था के थ्रू थी, उसके बाद धीरे धीरे नालंदा तक्षशिला की बात आप जान ही रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: वर्तमान में उसके साथ कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हुए जो परंपरागत या कन्वेंशनल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे, जिसमें विद्यार्थी एडमिशन लेता है, वहां जाता है, क्लास करता है, एग्जाम देता है और फिर वो उसको डिग्री मिलती है। क्योंकि समय की जरूरतों के हिसाब से, समय की अपनी सीमाएं थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जो है जॉब कर रहे थे, कहीं रोजगार में थे या अपना कोई उद्यम कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी संख्या थी जो परंपरागत शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते थे।
0: जी
1: तो दूरस्थ शिक्षा जो है वो उनके लिए एक बहुत अच्छा और बेहतर विकल्प निकल के आया। और अगर हम भारत में दूरस्थ शिक्षा की बात करें, आप देखेंगे दूरस्थ शिक्षा से संबंधित बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालय भी, और दूरस्थ शिक्षा में अगर आप एक लीडिंग रोल में देखें जिस विश्वविद्यालय का पूरा नेशनल प्रेजेंस है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू की, तो इग्नू आज के समय में पूरे भारत में 58 रीजनल सेंटर के माध्यम से जो है उच्च शिक्षा में अपने प्रचार प्रसार और ज्योति जो है जला रहा है। अगर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से पूरे भारत में जो है करीब 16 जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन एंड डिस्टेंस मोड से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो ये विश्वविद्यालय जो है ऐसे लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कहीं वो एंटरप्रेन्योर हैं या कहीं वो किसी सेवा में हैं, तो वो अगर हायर स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बेहतर विकल्प के रूप में दूरस्थ शिक्षा निकल के आती है।
0: प्रवेश कैसे होता है, कैसे कोई आदमी इसमें एडमिशन लेता है?
1: देखिए जहां तक प्रवेश की बात है तो चूंकि मैं इग्नू से जुड़ा हूं और भी सारे जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, सब में जो प्रवेश का माध्यम है वो ये है, ये सब हायर स्टडीज को प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम जो है 12th पास होना चाहिए जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं उनके लिए 10th भी जो है अगर किसी ने पास किया है तो वो एलिजिबल है, लेकिन वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अगर डिग्री प्रोग्राम में कोई है तो 10+2 जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। इग्नू जो है वो 2 बार एडमिशन ओपन करती है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो 12th पास है वो हमारे प्रोग्राम्स में जाके वेबसाइट पे इग्नू की वो देख सकता है और एडमिशन ले सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे जो भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज
0: जी
1: उसमें भी यही एडमिशन का प्रोसेस है। इग्नू ने अपने जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक और सुगम ऑप्शन दिया है। एडमिशन की प्रक्रिया हम लोग 2 बार करते हैं,
0: जी
1: एक जनवरी सेशन में और एक जो है जुलाई सेशन में,
0: जी
1: जिसका शुरुआत जो है जून 26 में हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 बार साल में इग्नू में एडमिशन के अवसर मिलते हैं। और वो जो है उसमें कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम है जैसे बीएड प्रोग्राम है हमारा, उसमें एंट्रेंस होता है, बीएससी नर्सिंग है या पीएचडी प्रोग्राम है उसमें होता है, बाकी डायरेक्ट एडमिशन है।
0: बहुत बार जैसे आपने कहा कि भाई काम काज में कोई लगा हुआ या किसी रेगुलर सर्विस में है, कहीं और पोस्टेड है, तो जो अटेंडेंस है या जो कहें कि जब कक्षा में हम बैठते हैं
1: जी,
0: क्या वो उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है?
1: देखिए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि रीचिंग टू अनरीच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी,
0: जी
1: जन जन का विश्वविद्यालय, इसका वही है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम की कुछ कह सकते हैं हर्डल्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी कि अटेंडेंस मैंडेटरी है
0: जी
1: और वहां पे आपको क्लास करना है, तो वो चीजें यहाँ पे खत्म की गई या मिनिमाइज की गई। हम लोग जो है रेगुलर क्लासेस तो नहीं होती,
0: जी
1: कुछ काउंसलिंग क्लासेस कराते हैं और वो काउंसलिंग क्लासेस उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के क्रेडिट के हिसाब से होती
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: उस काउंसलिंग क्लासेस में आप अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई अटेंडेंस की कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है

0: तो अगर कोई अटेंड करता है तो उससे लाभान्वित होता है। और दूसरी एक जो अच्छी बात है, हम लोग काउंसलिंग जो क्लासेस कराते हैं वो ऑनलाइन मोड में भी कराते हैं,
1: जी जी जी
0: तो अगर आप कहीं भी वर्किंग हैं, कहीं दूर हैं, तो आपको फिजिकल मोड में प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मोड में कहीं भी जुड़ के अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं।
1: आजकल स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, जो आपके यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं या डिप्लोमा कोर्सेज हैं, क्या उनमें वो प्रवेश ले सकते हैं जबकि शिक्षा कई वर्षों से उनसे दूर है, कई साल का गैप हो चुका है?
0: आज का जो समय है वो रियली कन्वेंशनल एजुकेशन हो या डिस्टेंस एजुकेशन हो, उसके साथ साथ स्किल पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो NEP 2020 जो आया उसमें जो है इस बात पे बहुत फोकस है कि हमारी जो शिक्षा है वो स्किल से जुड़े। भारत सरकार, प्रदेश सरकार और इवन विश्वविद्यालय NEP 2020 के माध्यम से जो है स्किलिंग के पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स इग्नू ने लॉन्च किए हैं
1: जी
0: जो जो है 6 महीने के हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और उसको करके जो है कोई भी रोजगार के अवसर आसानी से कर सकता है। जैसे मैं
1: जी
0: कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताना
1: जी
0: चाहूंगा।
1: जी जी जी
0: जैसे एक है हमारा सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट, आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट एक उभरता हुआ
1: जी
0: कैरियर
1: जी
0: है।
1: जी
0: सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फैशन डिजाइनिंग, ये भी एक 6 मंथ का प्रोग्राम है।
1: जी
0: ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
1: जी
0: सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसमें भी है। या आप टूरिज्म, जैसे टूरिज्म इस समय बहुत उभरता हुआ कैरियर है
1: जी जी जी
0: इंडस्ट्री के
1: जी
0: रूप में, अगर आप देखेंगे आने वाले 10-15 सालों में टूरिज्म सर्विस सेक्टर में एक बहुत ही कंट्रीब्यूटर जो है फैक्टर बनेगा।
1: जी
0: और आप देखेंगे कि जो टूरिज्म से रिलेटेड चीजें हैं उस पर भी एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है।
1: दोस्तों, आपने जयप्रकाश जी को सुना, मुझे उम्मीद है कि आप जयप्रकाश जी की बातों को समझ रहे होंगे, उन्हें आत्मसात करेंगे, खुद भी शिक्षित होंगे, अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगे, क्योंकि तभी राष्ट्र विकास करेगा। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी हमारे श्रोताओं को आपने शिक्षा संबंधी और खास करके कि जो आपने दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, जो उससे संबंधित जो आयाम है, उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा, इस विषय पर भी आपने डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा के साथ सुभाष खन्ना की यह भेंटवार्ता सुनी। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साबरी ब्रदर्स की गाई नात और कव्वाली। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये कव्वाली।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साबरी ब्रदर्स की गाई नात और कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है।

0: बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पर इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि दो टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वुजराए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुबरुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुबरुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुबरुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी समंदरी सरहदों की

0: सलामती और इंसदादे दहशतगर्दी में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्व

0: काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरका टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
0: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकररी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों को बामानी मौके फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहा है ताकि वो बाख्तियार हो सकें और मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकें। अपने आगाज के वक्त से मुल्क भर में मुनक़िदा 18 रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 20 लाख तकरूरियों के खतूत जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक़िद होगा। 9 तकरूरशुदा उम्मीदवार जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे जिनमें रेलवे, दाखिली उमूर, सेहत और खानदानी बहबूद और आला तालीम के महकमे के अलावा दीगर कई दूसरे महकमे शामिल होंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रेडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज होगा सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर खाहत तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज़्म है कि वो न सिर्फ दरांदाजी को रोके बल्कि दरांदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि

0: मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरों के साधक एन राजम से खास बातचीत।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है, उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहां आयोजित किया गया है और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
2: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया। व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
1: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
2: उन दिनों

0: जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की। उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की ज़रूरत है। तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद। तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। तो जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। तो इस और इस तरह मेरे रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या। तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
1: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे। तो कोई भी आते हैं तो वो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते ही रहे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही, तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज़ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो उन पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल OB केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और

0: उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु के का क्या शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए दो शैली, वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी। तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मैं, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ। और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया
1: जी।
0: वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ होगा तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल। या
1: तो ये सवाल
0: हम,
1: ऐसा
0: हम,
1: है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को

0: बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
1: हाँ जी,
0: चाहे लड़की हो या लड़का,
1: हाँ
0: पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वालेन, और वो तब से शुरू हो जाता है.
1: वाह,
0: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक.
1: हाँ. जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं.
1: जी, जी.
0: तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे. उनका स्थान इतना था.
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं. आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में? अच्छा, मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी. इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
1: क्या बात. अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है. तो उसके बारे में हमें बताइए. जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. आई मीन इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं. आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी. तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का. बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे.
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी. आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई.
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया. खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया.
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली. तो कहां शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता.
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी.
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मुझसे काफी सीनियर थे.
1: हाँ.
0: तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो.
1: बिल्कुल. और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे साथ भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है? तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी. अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
1: जी,
0: दोनों
1: जी,
0: में
1: जी.
0: तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी. तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों.

0: क्या फर्क है, क्या क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपने आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है।
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की।
1: जी।
0: जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उन्हीं को हम उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में। तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी भी रहते थे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए।
1: हाँ।
0: तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो गा बजाते हैं ठीक से, उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में कर लोगी तुम, मैं कोशिश करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का सिखा दिया, बड़ा ख्याल
1: जी।
0: स्थाई अंतर। उसके बाद वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, हम बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। तो हाँ चल, मुझसे मैं उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। उसके जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका, एकलव्य का। तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और सुन मुझसे सीख करके आज बजा दिया।
1: वाह।
0: तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और

0: मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह वो।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया, जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है। कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है। इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता
0: हाँ,
1: है आपको?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी,
1: जी
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो
1: जी
0: हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ।
1: क्या
0: उसमें
1: बात
0: मुझे रुचि नहीं है, और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है आजकल, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो,
1: जी
0: बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी। आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया, और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक

पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुरों के साधक एन राजम से खास बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग गोरख कल्याण में सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग गोरख कल्याण में सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।

0: मिठवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।